0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: Damn it.
2: क्या हुआ?
1: इंस्पेक्टर शेखर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। मेरी तमाम चालों पर पानी फेर दिया उसने। कितनी मुश्किल से फांसा था उसे।
2: अब हमें क्या करना चाहिए?
1: उसे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस की पूरी मदद करनी चाहिए हमें।
2: पुलिस की मदद?
1: हाँ, उसका यूं भाग जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पर सुनो कामनी, तुम जरा एहतियात से रहना, वो जरूर तुम्हारे मकान पर आएगा।

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC रेडियो।
2: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: MBC रेडियो, योर म्यूजिक कंपेनियन।

0: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। कल घोंघुप के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की दिशा में एकत्र हुए। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थिति से अवगत होने के बाद भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर जाने वाले हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 से लेकर दोपहर के 1:00 तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 व 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशिया को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने की के लिए गठित कमिटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग और काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा। सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिसाइल को रास्ते पर ही रोक दिया। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाया जाने वाला एक जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा सिवाय दक्षिणी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली

0: लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:01 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:05 पर।
1: Forecast. Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।
1: नमस्कार, सुबह की बेला है और आज रविवार 20 सितंबर की ये भोर की बेला आप लोगों के लिए मंगलमय रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भोर की बेला ये आपके लिए बहुत सुरीली रहे, सुबह का ये नजराना है। सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस भोर की बेला को हमें नज़र करने के लिए। मंगलमय दिन रहे आपके लिए और दिन आपके लिए सफल रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। सुबह के 6:05 हुए हैं, चलिए हम सुनते हैं आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। आर्य सभा मॉरिशस के स्वामी आशुतोष परिव्राजक जी से, जिनका परिचय डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी करने वाले हैं।
2: मधुर शहद सी हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।
3: वैदिक वाणी के आदरणीय श्रोताओं, सादर नमस्ते। स्टूडियो में आज उपस्थित हैं पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज। यह मॉरिशस में आपकी 5वीं यात्रा है। पहली बार आप 2014 में मॉरिशस पधारे थे। हमारा सौभाग्य है कि पुनः आपने इस देश में पदार्पण किया है। हम स्वामी जी का अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज का संदेश प्रस्तुत करने की कृपा करें।

भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः ओ।

सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी वैदिक वाणी के सुधी श्रोतृबंधु को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। आप सबकी सेवा में उपस्थित है ऋग्वेद का पहला मंडल, पहला सूक्त, मंत्र संख्या 6। आप सभी

मंत्रों को सुनते हैं, अर्थों को सुनते हैं। ये वैदिक वाणी परमात्मा का जो वेद ज्ञान है। ऋषि ने कहा, पितृदेव मनुष्याणाम वेदा चक्षु सनातनम। ये परमात्मा की वेद वाणी को नाम दिया है वरदा वेद माता। कैसी माता है? जो वरदान को देती है, मनोवांछित कामनाओं को पूरा करती है। जैसे जननी माता पुत्र का पालन पोषण करती है, उसको अमृतुल्य दुग्ध का पान करा के जीवन देती है, ऐसी ही परमपिता परमात्मा सबकी माता है, सबकी रक्षिका है, सबकी पोषिका है। और माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। संसार के सभी लोग माँ के गौरव को जानते हैं कि माँ कितनी महान है। माँ बिना संसार अधूरा है, सुना है। सो जगत जननी परमात्मा रूपी माता ने अपने पुत्र जीवात्मा के लिए वेद ज्ञान का दान किया, दुग्ध पिलाया, उसी को नाम दिया वरदा वेद माता। ऐसी माता जो वरदान देकर के जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार फलों को देती है। एक प्रकार से चारों फल अमृत दुग्ध के समान है, जो जीवात्मा को देव, विद्वान, योगी, ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी, ब्रह्मवेत्ता और अंत में जीवन मुक्त बना देती है। ऐसी वरदा वेद माता का वरदान आशीर्वाद मनुष्यों को मिले, यही परमात्मा की इच्छा है। प्रश्न करते हैं, भगवान क्या चाहते हैं? उत्तर ऋषि जो देते हैं, परमात्मा सबका कल्याण चाहते हैं। ये कल्याण क्या है? कल्याण है जिसमें जीवात्मा को अभीष्ट मिलता है, जो चाहता है वो मिलता है, उसकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होती हैं। एक संसार व्यक्ति कामना करता है, सपना देखता है, सपना अधूरा होता है। पर परमात्मा की सृष्टि में वेद माता के आशीर्वाद से सपना सपना न होकर के सपना साकार होता है, यही वेद माता का परम वरदान है। ऋषि मुनि ने बहुत प्रशंसा की वेदों की। ये वेद चार ज्ञान की वाणी है। परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही इस ज्ञान को महान ऋषियों के माध्यम से महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य, अंगिरा, इन परम तपस्वी ज्ञानी के माध्यम से इस ज्ञान को प्रकाशित किया, ज्ञान का दान किया। तो जो वेदवाणी क्या है? देव, पितर, मनुष्यों का सनातन चक्षु है। आप सभी श्रोता जन जानते हैं, बिन आँखों के संसार कैसा है? अंधेरा ही अंधेरा है। सो कहा गया है, जो ज्ञानी, विज्ञानी, पितरों, मनुष्यों का वेद ज्ञान चक्षु के तुल्य है। चक्षु रास्ता दिखाने के लिए है, मार्ग दिखलाता है। बिन आँखों के तो अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं गिर जाए, हानि हो जाए, टूट फूट हो जाए, कितनी बड़ी हानि हो जाती बिना आँखों के। सो परमात्मा ने वेद रूपी हमको दृष्टि प्रदान की है कि इस वेद दृष्टि से संसार को देखो, खाना पीना दिनचर्या करो, तुम्हारा जीवन देवकोटि का बनेगा, जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति होगी। तो ये वेदवाणी का गौरव है। कुछ शब्द मैंने बोला है कि पितरों का, ज्ञानियों का सनातन चक्षु है। सूर्य भी चक्षु है, वो सब संसार को रास्ता दिखाता है। नेत्र भी चक्षु रास्ता दिखाने के लिए, सूर्य रास्ता दिखाते हैं। और वेद ज्ञान अंतर से, अंतःकरण से हमको ज्ञान देते हैं। यूं कहें हम, आंतरिक दृष्टि है, अंतर ज्ञान है। इसलिए वेद ज्ञान से पावन संसार में कुछ भी नहीं है। और गीता में भी कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हे संसार के लोगों, इस संसार में ज्ञान से पावन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान परमात्मा का मुख्य गुण है, ज्ञान जीवात्मा का भी गुण है, और ज्ञान वेद, संपूर्ण वेद ज्ञान रूप ही है। मनु महाराज जी कहते हैं,
सर्वम

ज्ञान मयो ही सह, ये चार वेद हैं, ये सारा ज्ञान रूप ही है और परमात्मा का स्वरूप भी कहो तो कह सकते हैं। इतने पावन वेदों को हमारे पावन ऋषियों ने योग समाधि से जान करके वो ऋषि कहलाए, मंत्रदृष्टा कहलाए। उसी कड़ी में देवदैन सरस्वती के हम कोटि कोटि उपकारों को मानते हैं, जिन्होंने हमारे सामने वेदों का भाष्य किया, वेदों के अर्थ समझाए, वेदों का सत्य अर्थ क्या होता है। उन्हीं की शैली से जैसे उन्होंने वेदों का भाष्य किया, मैंने मंत्र प्रस्तुत किया, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहले सूक्त का छठा मंत्र। मंत्र के पद हैं, ओम यदंग दासुसे तम अग्ने भद्रम करिष्यसि तब एतत् सत्यमंगिरः। मंत्र के पद हैं, यत अंग दासुसे तम अग्ने भद्रम करिष्यसि तब एतत् सत्यम अंगिरः। ये पद पाठ हो गया। संबोधन अग्ने, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, जो ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, जीवात्मा को ज्ञान से लबाला भर देते हैं, ऐसे ज्ञानी परमात्मा से क्या प्रार्थना है। अंग, हे परमात्मा तुम अंग हो, प्रिय हो। कैसे प्रिय हो? जैसे व्यक्ति को अपने शरीर में हाथ पैर से प्रेम है, हाथ पैर का कटना चोट लग जाए तो बहुत पीड़ा होती है, ऐसे भावना है परमात्मा मैं आपको अपना अंग जानूं, जैसे मेरा शरीर है उसके बिना मेरा अस्तित्व तो नहीं है। सो हे परमात्मा आप अंग हो, मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, प्राण प्रिय हो। आप कैसे हो? जो व्यक्ति आपको आत्मसमर्पण करता है, पूर्ण समर्पण कर देता है, तुम आप पिता परमात्मा भद्रम करिष्यसि, उसका तुम कल्याण करते हो, कर रहे हो और करते जाओगे। हे परमात्मन, ये तुम्हारा जो स्वभाव है कि जो तुम्हें समर्पण कर देता है उसका आप पूर्ण विकास कर देते हो, उसको आप महामानव बना देते हो। सत्य मंगिरा, ये आपका स्वभाव हमको बहुत अत्यंत प्रिय लगता है। हम लोक में किसी से मांगते हैं, कुछ लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है, दे ना दे, हमारा सम्मान करे, हमारा अपमान कर दे, वो हमारा मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु में भी मित्र भी बन जाते हैं। पर हे परमात्मन आप ऐसे प्रिय हो, ऐसे अंगीरा हो कि सदा जीव का कल्याण ही करते हो। आप हमें बुरे कामों का दंड भी देते हैं, उसमें भी हमारा कल्याण निहित होता है, छिपा होता है। इसलिए हे परमात्मन आप हमारे सच्चे माता हो, आप हमारे पूज्य पिता हो, आप हमारे गुरु आचार्य हो। हे भगवन आप हमारे मित्र भी हो, आप हमारे बंधु हो। कैसे बंधु हो? जो सुख से हमको बांधना, जोड़ देना। हे परमात्मन आप हमारे परम चिकित्सक हो। हमारे तन में रोग पैदा होते हैं हमारी भूलों से, हमारे मन में रोग पैदा होते हैं कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि। हमारी बुद्धि में दोष पैदा होता है अहंकार का, प्रमाद का। हमारी आत्मा में दोष आ जाता है मूर्खता का। सो हे परमात्मन आप परम वैद्य हो, परम चिकित्सक हो, हमारे नित्य डॉक्टर हो, जो हमको तन के रोगों से, मन के रोगों से, बुद्धि के रोगों से बचाते हो और मुक्त भी कर देते हो। सो हे अंगिरा, अंग अंग में बसने वाले सर्वव्यापक परमात्मन, मेरा शरीर अपने आप में कब पूरा होता है? जब हाथ पैर गर्दन पूरा का पूरा हमारे समक्ष है तब हम शरीरधारी कहलाते हैं। गर्दन को काट देंगे तो हम ना रहेंगे, धड़ को काट देंगे तो हमारा अस्तित्व ना रहेगा। जैसे पूरे अंग मिलकर अंगी शरीर कहलाता है, ऐसे आप मेरे लिए संपूर्ण हो। कैसे संपूर्ण हो? मैं आपकी दृष्टि से देखूँ, आपकी बुद्धिमत्ता अनुसार मैं बोलूं, मेरी प्रत्येक क्रिया में आपकी आज्ञा पालन का भाव हो, यह आपके व्यापक व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे शरीर पर पड़े, मेरे इंद्रियों पर पड़े, मेरे मन पर पड़े, मेरी बुद्धि पर पड़े। इसी का नाम है

देवत्व जीवन। जहाँ व्यक्ति मनमानी नहीं करता है, स्वच्छंदता नहीं करता है, मूर्खता नहीं करता है, बड़े पिता की आज्ञा का पालन करता है, इसका नाम है वैदिक जीवन। यह ऋषियों का जीवन। प्रातःकाल उठते ही अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना, प्रभु में आपकी आज्ञा पालन के लिए समर्पित हूँ। उन्हीं की दृष्टि से देखना, सुनना, बोलना, कार्यों को करना, और रात्रि को जब सो जाते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करके, प्रभु मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन

0: हूँ, तब तुभ्यम समर्पये, तुम्हारा जान विजान तुमको समर्पित करता हूँ। तुम मेरे अपने हो, प्रिय हो, प्राण प्रिय हो, प्राणों के आधार हो, हे परमात्मन कोटि कोटि वंदना करता हूँ। इति ओम शम।
1: श्रोताओ, आज की वैदिक वाणी आपने पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज से सुनी। हम उनको धन्यवाद करते हैं और आपने सुना, आपके प्रति हमारा आभार। फिर मिलेंगे, नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी।
3: NBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
4: इस समय 6:20 हुए हैं। कुछ विज्ञप्तियां हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से, आप लोगों के लिए पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लामाही के निवासियों को सूचित करता है कि रॉयल रोड लामाही में मलाकोफ और मिगन लेन में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 11 बजे तक, और रॉयल रोड लामाही और नातू लेन में आज ही रविवार 20 सितंबर को 10 से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर अविनिलो ये पोंतियो कानूनी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8 से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मोसेलमो नोलैन पेरेबिया के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि आज रविवार 20 सितंबर को ही दिन के 11 बजे से 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम करने की मांग करती है। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 6:21 हुए हैं। चलिए जरा सोचे हम किस तरह हम भला कर पाए इस जहां का, इस जहां में भला करने के लिए औरों के साथ बांटने की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर बहार आए आपके जीवन में तो आप बहारों को ही बांट लीजिएगा। इन बहारों को बांटने से सारे जहां में बहार ही बहार आएगी।

प्यार बांटते चलें, बहारें बांटते चलें, हम खुशियों को भी बांटते चलें। पर खुश रहने के लिए ज़रूरी क्या है ये भी तो हम सोचें, इस पे भी ज़रा विचार करें। चलिए हम ज़रा किंग अंकल मूवी का ये गाना सुनते हैं। और खुश रहने के कई तरीके हैं, इन तरीकों को हम ज़रा अपनाते हैं। ये गाना होगा किंग अंकल मूवी से लिया गया, बड़ा प्यारा सा, खुशियों से भरा हुआ ये गाना सुनते रहिएगा। इसके बाद आप सुन पाएंगे आज का समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, जिसे लेकर अभी आने वाले हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 20 सितंबर 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल घोंघब के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। मंत्री शकील मोहम्मद ने किया हस्तक्षेप। फाइनेंशियल क्राइम कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मोरिसियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का है समय। और विदेशी स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की है कि वे जल्द ही जल्द एक नया AI सलाहकार नियुक्त करेंगे और देश में एक संघीय AI फोर्स का गठन भी करेंगे। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल घोंघब के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। स्थिति से अवगत होने के बाद आवास व भूमि मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने और स्थिति का जायजा करने के लिए मौके पर जाने वाले हैं। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं।
2: Et vous pouvez na une side visite là-bas, mais avant moi de faire side visite, vous content tout le temps qui me finit de demander une surveilleuse du ministère à là-bas en avance, fait tout un survey, vient de moi tout un élément d'information parce que quand on arrive là-bas, on a envie qu'il y ait une décision capable de prendre rapidement pour l'implémentation, et sa bonne décision là, et non pas pour la première fois pour découvrir l'Amérique. Vous pas content ça, vous content qui quand nous allons avec tous les éléments en main et nous amène bonne solution qu'il se doit. Sans qu'il nous pénalise aucun public mauricien et sans qu'il nous aussi cause un problème légal avec Bandimoun Kenan Bay déjà.
1: मंत्री का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे इस बात से इनकार करते हैं कि ये विकास सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच की कीमत पर हो। वे याद दिलाते हैं कि कुछ लीसेस साल 2014 के चुनावों से पहले और पुरानी सरकार के कार्यालय के दौरान दिए गए थे। उनका उद्देश्य सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच को बहाल करना और मॉरिशियनों को समुद्र तट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति देने के लिए नए रास्तों की पहचान करना है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन

0: रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है, जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है, सुबह के सारे 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार यानी कि 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। ये इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपया जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मॉरिशियन शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमिटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोटवी के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@govmu.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। ज्यादा विस्तार गीता सुनारायण के साथ।
1: राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मॉरिशियन शामिल करने के मामले पर इस समय सलाह मशवरा जारी है। सिलेक्ट कमेटी बनाए जाने के बाद अब आम जनता से अपने सुझाव देने को कहा गया है। राष्ट्रसभा की स्पीकर शिरीन ओमिरोडी ज़िफ़्रा कहती
2: हैं,
1: संसद में प्रधानमंत्री का एक मोशन था जिससे एक सिलेक्ट कमेटी कायम की गई। इसमें संसद के सदस्य हैं जिन्हें मैंने चुना है और ये सिलेक्ट कमेटी निरंतर बैठक लगा रही है, पर मैं इसमें नहीं हूँ। ये गोपनीय तरीके से काम करती है, बंद कमरे में बैठक लगती है। लोग इसमें अपने प्रस्ताव भेजकर भाग ले सकते हैं लिखित रूप से 22 सितंबर तक। ये प्रस्ताव राष्ट्रसभा के क्लर्क को भेजने चाहिए ताकि सिलेक्ट कमेटी विचारों पर अमल कर सके। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख मंगलवार 22 सितंबर रखी गई है। सुझाव लिखित रूप में ईमेल के जरिए या इस पते पर भेजे जा सकते हैं, क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, या फिर मेल के जरिए clerk@govmu.org पर। ये प्रक्रिया कमेटी को अलग अलग राय जानने में मदद करेगी जिसके बाद वो अपना काम आगे बढ़ा सकेगी।
0: प्रतिष्ठित गोंकू 2026 की दौड़ में अपने उपन्यास क्रोनिक द रॉयम पेजू के साथ आगे चल रही लेखिका आनंदा देवी इस सप्ताह औती चैनल के कार्यक्रम 28 मिनट की मेहमान थी। पत्रकार एलिजाबेथ कैं द्वारा लेखन और मॉरिशस की पहचान के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछे जाने पर हमारी देशवासी ने मॉरिशस में क्रियोल भाषा को दिए जाने वाले स्थान पर विशेष रूप से स्पष्ट और गहरी दृष्टि साझा की। हमारे सहयोगी जॉन फ्रांसवा ने लेखिका आनंदा देवी से बात की, उनको सुनते हैं विवरण तीना बुदना का।
3: Le créole est le ciment de ce peuple.
4: क्रियोल इस देश के लोगों को जोड़ने का मुख्य माध्यम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई मॉरिशसवासी इसे एक भाषा के रूप में बहुत कम समझते हैं, क्योंकि केवल फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी और चीनी आदि ही भाषाएं मानी जाती है। लेकिन क्रियोल को हम बहुत चाहते हैं, पर केवल घर के भीतर। इसी कारण से हाल ही में उन्होंने इसे पढ़ाना शुरू किया है और मॉरिशस के लेखकों से ऐसे पाठ और पुस्तकें तैयार करने के लिए कहा गया है जो पहले नहीं थी, और मेरे लिए ये काम करना बहुत खुशी और बड़े सम्मान की बात है।
0: इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही है। साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को मजबूत करना चाहते हैं। उर्वशी बिकारी भंजन की रिपोर्ट पर तीना बुदना का विवरण।
4: मॉरिशस में हर साल लगभग 550,000 टन कचरा पैदा होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए कई संस्थाएं जगहों की सफाई करने और लोगों को बेहतर आदतों के प्रति जागरूक करने के लिए आगे आ रही है। इसका मकसद है कि पर्यावरण की सुरक्षा को एक राष्ट्रीय सोच बनाया जाए। लेट्स डू इट मॉरिशस के कंट्री लीडर क्रिसा पादू हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं।
2: 2024 En une demi-journée, nous ne collectons 65 tonnes de déchets.
4: 2024 में सिर्फ आधे दिन में 65 टन जंगली कचरा इकट्ठा किया गया था। मैं घरेलू कचरे की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसे कचरे की गाड़ियों द्वारा नियमित रूप से उठाया जाता है। इन 65 टन कचरे में ये देखकर हैरानी होती है कि 8 टन प्लास्टिक और बहुत सारा कपड़ा कचरा भी शामिल था।
2: 8 टन de plastique parmi ces 65 tonnes qui nous collectées, mais il y a aussi beaucoup de déchets textiles.
4: सफाई अभियानों के अलावा संस्थाएं हर इंसान की जिम्मेदारी पर जोर देती है। कचरा कम करना, खुले में कचरा फेंकने से बचना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना।
2: Donc c'est un travail qui nous fait pendant plus qu'une décennie, actif sur le terrain, pas seulement pour amener une campagne de nettoyage, mais aussi pour sensibiliser la population.
4: तो ये कैसा काम है जो हम एक दशक से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं? जमीन पर उतरकर काम करना सिर्फ सफाई अभियान चलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। हमारा मकसद कम से कम 5% मॉरिशस की आबादी तक पहुंचना है क्योंकि ये लगभग 65,000 लोग होते हैं और वे मॉरिशस में एक बड़ा और असली बदलाव ला सकते हैं। हमने शिक्षा और जागरूकता के अभियान चलाए, खासकर स्कूलों में, क्योंकि हमारा मानना है कि इसकी शुरुआत बहुत छोटी उम्र से ही होनी चाहिए।
2: Parce que nous pensons qu'il est important que ça commence à un très jeune âge.
4: एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है और आगे चलकर मकसद ये है कि हर मोहल्ले में लोगों की बेहतर भागीदारी के साथ खुले में कचरा फेंकने के खिलाफ इस लड़ाई को एक टिकाऊ प्राथमिकता बनाया जाए।
0: मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी के दरवाजे पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चुना, स्टॉफिश, दोगाद, हमारी कई महासागरीय मछलियों को आज कुछ यूरोपीय मंडियों, खासकर इनमें इंग्लैंड भी शामिल हैं, उनके द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई है और यह मॉरिशस को नए बाजारों की तलाश करने, विशेष रूप से एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। एक्वाकल्चर की प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से भूमध्य सागर में चूना मछली पालन, इन कठिनाइयों का कारण बनने वाले कारकों में से एक बताई जा रही है। मछुआरा संघ के प्रतिनिधि जुडेक्स रामफल के अनुसार, सरकार को मौजूदा समझौतों के तहत यूरोपीय बाजार में मॉरिशस की मछली की पहुंच का बचाव करना चाहिए, परंतु अगर ये अवसर कम होते हैं तो मॉरिशस को अपनी विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और एशियाई मंडियों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। जुडेक्स रामफुल्ला और फैब्रिस दाविद को सुनते हैं जिनसे बात की है हमारी सहयोगी शबनीज उजिया ने।
5: Aujourd'hui, l'Europe, même l'Angleterre, les pays abyssins, bannent en passant avec l'île Maurice parce qu'il a cause.
4: आजकल यूरोप, यहाँ तक कि इंग्लैंड भी ये कह रहा है कि मॉरिशस से मछली लेना बंद करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप खुद अपने यहाँ, खासकर मेडिटेरेनियन के इलाके में, बड़े पैमाने पर मछली पालन कर रहा है। वहाँ समुद्र में बहुत बड़े बड़े पिंजरे बनाए गए हैं और चूना जैसी मछलियों का भी बड़े पैमाने पर पालन किया जा रहा है। अगर हम अपनी मछली बाहर भेजते रहेंगे तो हमें यूरोप से भी ये मांग करनी चाहिए कि वे हमारे साथ बराबर का सहयोग करें। यूरोपियन यूनियन का मॉरिशस के साथ समझौता भी है, इसलिए हमारी सरकार को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि यूरोप के देश हमारे मछली खरीदते रहे। अगर यूरोप हमारी मछली लेना बंद करता है तो फिर हमें एशिया के बाजारों की तरफ देखना पड़ेगा, जैसे ताइवान, थाईलैंड और सिंगापुर।
5: कोमो ताइवान, कोमो थाईलैंड, कोमो

0: c'est un gros.
1: Maurice est un exportateur de poissons, notamment de thon, et principalement.
2: Mauritius मछली का खासकर चूना का मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को निर्यात करता है. ये सब एक मत्स्य पालन समझौते यानी फिशरीज एग्रीमेंट के तहत होता है, जिसमें हमारे समुद्री क्षेत्रों में पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा तय होती है. जब वे हमारे समुद्र में मछली पकड़ती है तो उसका एक हिस्सा सीधे ताजी मछली के रूप में बाहर भेज दिया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा मॉरिशस के कारखानों में प्रोसेसिंग के लिए जाता है. यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के अलावा भी हमारे पास मछली बेचने के अन्य रास्ते हैं. हम ताइवान और अमेरिका को भी मछली भेजते हैं. ये बाजार पहले से मौजूद है और जाहिर है कि इन्हें और आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम फिशिंग सेक्टर को और विकसित और आधुनिक बनाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे पारंपरिक मछुआरे यानी आर्टिजनल फिशरमैन धीरे धीरे अर्ध औद्योगिक मछुआरे यानी सेमी इंडस्ट्रियल फिशरमैन और खुद कारोबारी बने यानी खुद ठेकेदार बने.
1: Quand ils nous bannent pêcheurs artisanaux, viennent de plus en plus bannent pêcheurs semi-industriels et aussi bannent entrepreneurs eux-mêmes.
3: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर इस बात की घोषणा की है कि वह जल्द ही एक नया एआई सलाहकार नियुक्त करेंगे और देश में एक संघीय एआई फोर्स का गठन भी करेंगे. हालांकि उन्होंने अपनी इन पहलों के क्रियान्वयन या रूपरेखा को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की. रूस में संसदीय चुनाव के दूसरे दिन शनिवार को भी मतदान जारी रहा. 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया में यूक्रेन के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में भी अन्य रूसी क्षेत्रों की तरह वोट पड़ रहे हैं. यूक्रेन का हिस्सा रहे डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ापोरिज़िया के हिस्सों को रूसी सेना ने बीते 4.5 वर्षों के युद्ध के दौरान जीता है. इसके बाद रूस ने सितंबर 2022 में इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाकर उन्हें औपचारिक रूप से रूसी संघीय में शामिल कर दिया था. सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग और काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा. सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मिसाइल के रास्ते में ही रोक दिया गया. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार कई ईरानों में काफ़ी देरी हुई और कुछ ईरानों को भी रद्द कर दी गई है. और अंत में मौसम का हाल. आम हालत मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाया जाने वाला एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा सिवाय दक्षिणी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी. दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी. रात के दौरान आसमान साफ दिखेगा. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार. तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच. तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय 6:01 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:05 पर. चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर. कल घोंगप के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की

के लिए एकत्र हुए। मंत्री शकील मोहम्मद ने किया हस्तक्षेप। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मॉरिशियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का है समय। और विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर इस बात की घोषणा की है कि वे जल्द ही एक नया एआई सलाहकार नियुक्त करेंगे और देश में एक संघीय एआई फोर्स का गठन भी करेंगे। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। रॉल रोड पोलोजी में 78 ईयर्स ओल्ड के श्री वासुदेव मगन, जिन्हें सब लोग रोहित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के साढ़े नौ बजे उन्हीं के घर रॉयल पोलोजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। शिवाजी रोड पुज्जी फ्लैक में 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी बिस्नत, जिन्हें सब लोग चिकिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बहन श्रीमती फुलमनी बिस्तुनित के घर शिवाजी रोड पुज्जी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पुज्जी फ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड बुलेरूज फ्लैक में 94 ईयर्स ओल्ड की मिसिज हनम मसूदी, पैदाशी नाम सुहादत, और जिन्हें सब लोग दादी खैरून के नाम से भी जानते थे, वंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के मकान रॉयल रोड बुलेरूज फ्लैक से निकालकर दफनाने के लिए रिश्मा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन में 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयवंती राम, पैदाशी नाम गुंडा, और जिन्हें सब लोग शीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री राकेश राम के घर कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड बनान क्लूनी में 72 ईयर्स ओल्ड के श्री देवीदीन बाबूलाल, जिन्हें सब लोग अनिरुद्ध के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती तारा बाबूलाल के घर रॉयल रोड बनान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनान क्लूनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बिकू लेन शामुनी में 65 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञानदेव बिकू, जिन्हें सब लोग मालबाओ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर बिकू लेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया डिगाले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। बिस्वा लेन प्लेमायो में 50 साल की

50 years old ki श्री जितेन मुस्लिगादु जिन्हें सब लोग विनय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उन्हीं के घर बिस्वा लेन प्रेमायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM बारो लेन अंग्रेमेंशियल में, अस्सी साल की श्रीमती हीरावंती रिसल पैदाशी नाम राम गुलाम और जिन्हें सब लोग दादी माइबू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे पंडित अनिरुद्ध मिश्रा रिसल के घर बारो लेन अंग्रेमेंशियल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM नंबर 49 रोबेया एडवर्ड हॉट ट्रेफल रॉजिल में, अठावन साल की श्रीमती आरती कुमारी बंधु पैदाशी नाम सिबोगत और जिन्हें सब लोग अमिता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री धीरज बंधु के घर नंबर 49 रॉबर्ट एडवर्ड हॉट ट्रेफल रॉजहिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM रॉयल रोड ग्लेनपार्क वाकवा में, 74 साल की श्रीमती बाईजाबाई एसु पैदाशी नाम गणेश और जिन्हें सब लोग बाईजा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के बारह बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वा मामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00 PM एवेन्यू ओकिडे कैथोबोन में 91 years old की मिसिस फातमा बीबी महमूद सोरेफान, पैदाइशी नाम नहबू और जिन्हें सब लोग फातमा नहबू सोरेफान के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के बारह बजे उन्हीं के मकान एवेन्यू की दे कैथ्रो बोन से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:00 PM सुकारा लेन ब्रेजेवेजिया में 54 साल के श्री विश्वराज सुकारा जिन्हें सब लोग मिमी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनिता सुकारा के घर सुकारा लेन ब्रेजेवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचुए की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM लाकावेन नंबर दो वाकवा में 86 साल की श्री श्रवण कुमार आजारी सिंह जिन्हें सब लोग मिगदत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा एक बजे उन्हीं के घर लाकावेन नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 1:15 PM La Cour de Vaux, Petit Verger, Saint-Pierre, 91 साल के 91 years old के श्री सुखदेव ओसेनी जिन्हें सब लोग बासदेव के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर लाकू देवू पिछले व्याजे सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंसों सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM

0: Seulement VRS number 11 Hermitage Phoenix, mais moi seulement VRS number 11 Hermitage Phoenix, mais 72 saal ke, 72 years old ke, Shri Ram Raj Daulet. श्री राम राज दौलत, जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपैर के तीन बजे, उन्हीं के घर मुसलमान वी आर एस नंबर 11 एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सौंस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रोमेशन टू फ्यूनरल टूडे एट 3 PM Bonnet Road 8e Mille Triolet-Main, Bonnet Road 8e Mille Triolet-Main, 60 साल की, 60 years old की श्रीमती सरस्वती मुचिया, पैदाइशी नाम तानी, और जिन्हें सब लोग बानिता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे उनके बेटे श्री वेदाशय सूरज मुचिया के घर बुनेट रोड विचमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: गजानन आश्रम, जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रसबेल के बगल में पाया जाता है, एक सरस्वती महापूजा का आयोजन कर रहा है। ये पूजा रविवार 20 सितंबर 2026 को सपहर के 3 बजे होगी। बच्चों एवं छात्रों से विनम्र आग्रह है कि वे इस पूजन में भरपूर भाग लें। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया आचार्य नगेंद्र शर्मा से संपर्क करें इस फोन नंबर पर 5914339050 5914339050 5914339050।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।
4: सुबह के 7:01 और 40 सेकंड हुए हैं।
5: स्पोर्ट्स न्यूज़।

सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लैंड की चैंपियन टीम आर्सेनल को लगा जोर का झटका। ब्राइटन एंड होव के जांबाज सिपाहियों ने द गनर्स को 3-3 बार धूल चटाई, यानी ब्राइटन 3 आर्सेनल 0। सबको हैरान करने वाला ये मैच, ये नतीजा। खुद मिकेल आर्टेटा हैरान रह गया ब्राइटन के ब्रिलियंस को देखकर। सो ब्राइटन ने कल आर्सेनल को 3-0 से तोड़ा। बाकी मैचों में भी कमाल के स्कोर रहे। सबसे पहले कल का जो अर्ली किक ऑफ रहा, उसमें एक बार फिर टोटेनहम हॉटस्पर जीत नहीं पाया। एस्टन विला ने उसे एवे जाकर 3-2 से तोड़ा। सो खेल के 45वें मिनट पर फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर युवान मनजाम्बी का एक पहला गोल, फिर निकोला जैक्सन और एमिलियानो ब्युंडा का एक शानदार गोल, 3-0 से एस्टन विला आगे खेल के 80वें मिनट तक। उसके बाद जाकर 86 पर कोनो गालागर ने टोटेनहम के लिए 5 मैचों के बाद पहला प्रीमियर लीग गोल स्कोर किया। उसके बाद यान पोल वन हैक ने इंजरी टाइम में एक और गोल स्कोर किया, जो पर्याप्त नहीं रहा। अंततः टोटेनहम की हार हुई, टोटेनहम 2 एस्टन विला 3। एवर्टन ने अपनी ओर से इप्सविच टाउन को 1-0 से परास्त किया। इप्सविच की ओर से इसहाकू फातावी को रेड कार्ड भी मिला 67वें मिनट पर। चियानो बैरी का गोल द टॉफीज के लिए, एवर्टन 1 इप्सविच टाउन 0। न्यूकासल यूनाइटेड की भी जीत हुई इन जेम्स पार्क में, न्यूकासल 2 हल सिटी 1। जोसेफ विलोक लेविस हॉल ऑन टारगेट खेल के 3rd और 7वें मिनट पर ही न्यूकासल 2-0 से आगे, फिर एक पेनाल्टी भी मिस की युआन विसा ने।

तब जाकर 67वें मिनट पर मोहम्मद अली चो ने हल सिटी के लिए एक गोल कम किया। फिर भी न्यूकासल यूनाइटेड 2 हल सिटी 1 और कल के आखिरी मुकाबले में नॉटिंगम फॉरेस्ट की हार हुई, नॉटिंगम फॉरेस्ट 0 कोवेंट्री सिटी 1। अब आज रात 4 अन्य मैच खेले जाएंगे इंग्लैंड की इसी प्रीमियर लीग में। सबसे पहले शाम 5 बजे बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल। एंटोनी इराओला की पुरानी टीम अक्सर लिवरपूल से मार खाती आई है, किंतु ये मैच अलग थलग है। जब पानी सर से ऊंचा चढ़ जाता है तब खतरा मंडराने लगता है और एक्शन लेना पड़ता है, इसलिए सावधान। बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल आज शाम 5 बजे। उसी समय लीड्स यूनाइटेड खेलेगी क्रिस्टल पैलेस के विरुद्ध। मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला सन्डरलैंड से, और आज रात 7:30 बजे 7:30 PM फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस बीच मैनचेस्टर सिटी अब लीग टेबल के पहले स्थान पर आ गई है, उसके पास हैं 12 अंक, 4 मैचों में 4 विंस। आर्सेनल की हार के बाद उसके पास भी 12 अंक, लेकिन गोल एवरेज पर वो अब दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि ब्राइटन अब मजबूती के साथ तीसरे स्थान पर है, 10 अंक लिए 5 मैचों में 3 विंस 1 ड्रॉ 1 हार। ब्रेंटफोर्ड चौथे स्थान पर 9 अंक। लिवरपूल के लाल 10वें स्थान पर हैं, केवल 6 अंक लिए 4 मैचों के बाद। और मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें पोजीशन पर है, 4 मैचों में केवल 4 अंक। सो इतना सब कुछ कल के खेले गए मैचों को लेकर। आज रात 4 मैच खेले जाएंगे। सो बढ़ते हैं अब स्पेन के लालीगा की ओर, जहां पर एफसी बार्सिलोना कमाल पे कमाल दिखा रहा है। कल बार्सिलोना ने कल शानदार जीत हासिल की, बार्सिलोना के लिए एक और हैट्रिक स्कोर की उसके ब्राज़ीलियन स्टार ने। सो सेविलिया 1-3, राफिनिया की एक शानदार हैट्रिक। इसी राफिनिया ने भी सप्ताह के दौरान एक और हैट्रिक स्कोर की थी रेसिंग सांतांदर के विरुद्ध, यानी कि 2 मैचों में 6 गोल, एफसी बार्सिलोना 3-1। सेल्टा विगो ने भी रेसिंग सांतांदर को 5-0 से पछाड़ा। सांतांदर की लगातार दूसरी हार, पाब्लो ड्यूरान का एक डबल सेल्टा विगो की ओर से। एथलेटिक 0, अलावेज 0, ओसासुना 1, रेयो वालेकानो 1। आज रात रियल मैड्रिड अपना लेट मैच खेलने वाली है। इटली के सीरिया में भी इंटर मिलान ने बाद में इक्वलाइज किया, वो एएस रोमा से 2-0 से हार रही थी। मानुकोने का एक डबल एएस रोमा के लिए। फिर सेकंड हाफ में जाकर लुटारो मार्टिनेज ने एक डबल स्कोर कर इंटर मिलान को बचाया, एएस रोमा 2-2। एसएस लाजो ने एवे जाकर वेनेजा को 2-0 से हराया। उदिनेजे 0, कागलियारी 1, बोलोनिया 1, टोरिनो 1। तो जर्मनी के बुंडेसलीगा में कल स्टुटगार्ट की हार हुई, स्टुटगार्ट 0-1, मैक्सिमिलियन बाये ऑन टारगेट फॉर बोरुशा डॉर्टमुंड। वर्डर ब्रेमन ने ऑक्सबर्ग को 3-2 से हराया। हैमबर्ग एसवी 2-FC Cologne 1, एंट्राक फ्रैंकफर्ट 2-ST Freiburg 2, और बोरुशा मंचनगढ़ 3-4। फ्रांस के लीग 1 में पारी एफसी ने स्ट्रासबूर्ग को 2-1 से हराकर लीग टेबल का दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। अब तक पारी एफसी ने एक भी मैच नहीं हारा है, कमाल की टीम है, अभी न्यूली प्रमोटेड टीम है। सो कल उसकी जीत हुई 2-1 से स्ट्रासबूर्ग के खिलाफ। एंजे 2-3-0, लुमा 2-1, ओलंपिक दे लियों की जीत हुई 4-0 से रेन के विरुद्ध। एनेस्ट नुआमा का एक डबल, कोरिंटियन टोलिसो ने भी एक गोल स्कोर किया। लियों 4-0, टुलूज ने ले हावर को 3-2 से परास्त किया। बता दें कि आज दोपहर के 3 बजे स्कॉटिश प्रीमियरशिप में एक जबरदस्त क्लासिक मुकाबला खेला जाएगा, आज शाम 3 बजे से ही, सेल्टिक और रेंजर्स के बीच। स्थानीय फुटबॉल में कुसाफा अंडर 20 चैंपियनशिप के अंतर्गत आज मॉरिशस की अंडर 20 टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी, इस बार सेशल्स के विरुद्ध मापुतो के स्टाडियो दो जिम्पेटो में। उल्लेखनीय है कि पहले मैच में बेबी डोडोज की हार हुई थी 1-0 से नमीबिया के विरुद्ध। एयर बैडमिंटन में मॉरिशस को मिला चांदी का पदक मेंस ट्रिपल प्रतियोगिता में। और क्षेत्रीय फुटबॉल में रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के अंतर्गत आज शाम 3:30 बजे वहीं के मैदान में सबाकुस बॉम्बोवियरिया का मुकाबला।

0: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
1: La Mauritius Broadcasting Corporation vous invite à soumettre votre offre pour la fourniture d'une couverture d'assurance médicale pour la période 2026-2027. Le dossier d'appel d'offres est disponible gratuitement sur le site du Procurement Policy Office, publicprocurement.govmu.org. Veuillez noter que les offres doivent être soumises exclusivement par email à tender@mbc.mu. Pour toute information, contactez le Tender Committee au 402 8000, poste 427, ou par email à bidsec@mbc.mu au plus tard le 17 septembre 2026. Et surtout, retenez la date, les offres doivent être soumises au plus tard le 24 septembre 2026 à 14h.
2: MBC Radio, 24 hours a day.
3: इस समय 7:10 हुए हैं, सुनिएगा कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ब्रह्मस्थान के ग्राहकों को सूचित करता है कि मोसिलमो वीओएस ब्रह्मस्थान, बालकिसुन रोड और कौचे के एक भाग में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:15 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। पोलवी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रुखयाल जोसेफ और जोसेफ रिविएरा में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रौचिली के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि तेलफेया विलेज, ले जार्डिन दे शांतने, रेलवे पोस्ट ऑफिस, मोसिलमो एस्प्राल, डॉक्टर पिलो, मोसिलमो रैप्सोडी, कालाचन, सोसाइटी मोन प्लेजिर, फेल Gentilly, Fail Office, Flat et Folia, Mosselmo MDA 1 and 2, Fail Mini C 1 and 2, Scholl Telfair Institute 1 and 2, CWA Camp Auguste, CWA Mini C, Burns Pump, STP Pumps, PV Form Mini C, Lycée des Mascarins, École du Centre, Or, les allées Helvetia, PH Free में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर ट्रेफ के कॉन्डालेन, एवेन्यू दे कैक्टस, एवेन्यू दे ऑर्किडे, एवेन्यू दे जेरेनियम और आसपास के इलाकों में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबास्टोपोल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिलमो सिकडो, Côté route Pèlerin, Sébastopol, Camp Sonore, rue Crémation, rue Ragouba, और आसपास के की गलियों में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कोरोमंडल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिलमो लीजिंग, एवेन्यू रिवरसाइड और अपार्टमेंट द वेज में आज रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 2:00 तक

0: सड़क मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कैथरोबोन के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि एवेन्यू बाउंडेरी, रेजिडेंस पे अलावाल, रेजिडेंस बोसेजो, रोबे एडवा हॉट, डॉक्टर फेये और आसपास के इलाकों में आज रविवार 20 सितंबर को दिन के 10 बजे से 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर कैथरोबोन के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि पाल्मा रोड के एक भाग में वेस्टर्न बाउंड्री, मानिक एवेन्यू, लोटस एवेन्यू, जैक्सन एवेन्यू, गोपाल सिंह एवेन्यू, रामदानी एवेन्यू और बासिन रोड, कावलीसर रोड और लासोस एवेन्यू में तथा आसपास के इलाकों में कल सोमवार 21 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
0: तो इस समय सुबह के 7:15 बजे हैं, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपके लिए नजराना। वो नजराना जो हर किसी को मिलता है बड़े नसीब से। सुबह का ये नजराना होता है ऊपर वाले की देन, और ऊपर वाले की इस देन पर आप जरूर ऊपर वाले को धन्यवाद कहिएगा। हम सब मिलकर ऊपर वाले को धन्यवाद कहें। और वैसे भी इस समय 7:16 हो चुके हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों का हम बहुत ही गहराई से, बड़े दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे आप, बस आपका मोटिव जो है उस मोटिव तक आप पहुंच पाएं, आपका हर उद्देश्य पूरा हो जाए, ऐसी प्रार्थना आपके लिए करते हैं। चलिए जो निभाते हैं हम रिश्ते अपने दिल से, वो रिश्ते बड़े सयाने होते हैं, वो रिश्ते बड़े पवित्र होते हैं। चलिए दिल का रिश्ता का ये गाना सुनते हैं और हर रिश्ते को हम ज़रूर महत्व देते हैं, हर रिश्ते के महत्व को हम पूरी तरह से समझ पाएँ, ऐसी उम्मीद रखें हम।

0: इस समय सुबह के 7:21 हुए हैं।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। हमारे शास्त्रों में चोरी न करने का आदेश क्यों दिया गया है? चोरी करने का अर्थ क्या है? मनुष्य चोरी क्यों करता है और चोरी का परिणाम क्या होता है? आइए विचार करें। किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना उठा लेना चोरी है। मनुष्य अनेक प्रकार से चोरी करता है। कोई कभी किसी का बटुआ छीन लेता है, कभी किसी का मोबाइल चुराता है, कभी दूसरों के घर में घुसकर जेवर चुराता है, कभी बैंक में डाका डालता है, रास्ते पर चलते किसी का बस्ता हड़प लेता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी चुरा ले जाता है। उसे लगता है कि चोरी करने से उसे लाभ होगा। एक व्यक्ति पूजा करने के लिए मंदिर गया। उसने दरवाजे पर अपने जूते निकालकर मंदिर में प्रवेश किया। पूजा समाप्त हुई तो वह वापस दरवाजे के पास अपने जूते पहनने के लिए आ गया। उसने देखा कि बगल में किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने नए जूते रखे हुए थे। उन नए जूतों को पाने की उसके मन में इच्छा हुई। उसने कहा, ये जूते यदि मुझे मिल जाएं, तो इनको पहनने में सुख मिलेगा। इतना कहकर उसने इधर उधर देखा, कोई उसे देख नहीं रहा था। उसने चुपके से उन जूतों को अपने बस्ते में डाल दिए और तेजी से वह वहां से चला गया। व्यक्ति ने तीन प्रकार से चोरी की। पहली चोरी, उसके मन में दूसरे की वस्तु पाने की इच्छा हुई, उसने मन से चोरी की। दूसरी चोरी, उसने कहा, ये जूते यदि मुझे मिल जाएं, तो इनको पहनने में सुख मिलेगा। ऐसा कहकर उसने वाणी से चोरी की।

0: और तीसरी चोरी उसने दूसरे के जूते अपने बस्ते में डाल दिए। उसने शरीर से चोरी की। श्रोताओं, मन, वाणी और शरीर से चोरी करने के परिणाम बहुत भयानक होते हैं। जूते चुराने के बाद वह व्यक्ति अपना घर जल्दी ही लौटना चाहता था। हड़बड़ाहट में रास्ता पार करते समय उसने अच्छी तरह से देखा नहीं और वह बस से टकरा गया। टकराने पर वह रास्ते पर गिर गया। उसके दोनों पैर बस के मोटे पहिए से कुचल गए। उसकी जान बचाने के लिए उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा। चुराए हुए जूतों को वह कभी पहन नहीं पाया और ना ही अपने ही जूतों का प्रयोग कर पाया। व्यक्ति जितना चुराता है उससे कई गुना अधिक उसे चुकाना पड़ता है। हर व्यक्ति जानता है कि चोरी करना गलत है। एक कुत्ते को जब खाना दिया जाता है तो जिस स्थान पर उसे परोसा जाता है वह उसी स्थान पर खाता है, परंतु जब वह कोई रोटी कहीं से चुराता है तब बहुत दूर जाकर उसे खाता है। वह दूसरों की नज़रों से बचकर चुराई हुई रोटी खाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत किया। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब महसूस किया कि अपने भाई के कड़े से सोना चुरा कर उसने गलती की, तब उसने अपने पिता को पत्र लिखकर माफ़ी मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे पर उन्होंने क्रोध नहीं किया, ना ही उन्हें कोई सजा दी। वे एकदम मौन हो गए। पिता के आंसुओं को और उनके मौन को देखकर बालक मोहनदास करमचंद गांधी को इतनी लज्जा और इतना दुख हुआ कि उन्होंने कभी चोरी न करने का संकल्प किया। इसी संकल्प का परिणाम है कि आगे चलकर वे एक साधारण मनुष्य से महात्मा बने। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोस्थानम। चोरी न करने का भाव जब मनुष्य के भीतर दृढ़ हो जाता है तब उसे रत्नों की प्राप्ति होती है, अर्थात अपार सुख मिलता है। श्रोताओं, जो वस्तु हमारा नहीं है उसे हम लेने की इच्छा न करें। अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से चोरी न करें। भूल से अगर कभी चोरी हो जाए तो हम माफ़ी मांगें, आगे से चोरी न करने का संकल्प लें और अपार सुख पावें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

एक झलक हम देखते हैं हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों के बारे में। अभी तो हमारी आपकी मुलाकात सुबह का नजराना कार्यक्रम में हो रही है और इस कार्यक्रम के बीच में आप 8 बजे सुन पाएंगे आज के भोजपुरी समाचार अभी उदय से, और उसके बाद पैगाम आपके नाम प्रोग्राम लेकर आएंगे हम। आपके अपनों के नाम आपके मैसेजेस उसमें भेजने वाले हैं और 9 से 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज का मंगलाचरण कार्यक्रम। और आज का मंगलाचरण कार्यक्रम आप सुनिएगा विकास गौर जी की प्रस्तुति में, और 10 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद आप उर्दू प्रोग्राम सुनिएगा निसार की प्रस्तुति में। फिर 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप तमिल प्रोग्राम सुनिएगा जिसे लेकर आएंगे इस सुंदरम, और कृतिका लेकर आएंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम दिन के 12 बजे। 1 बजे आप सुनिएगा मराठी प्रोग्राम सीताबाई धर्मिया से, 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम जिन पेश करेंगे, 3:30 बजे सुनिएगा आज का गुजराती कार्यक्रम रत्ना से, फिर 4 बजे से 5 बजे तक आप और हम कार्यक्रम सुनिएगा पूजा से, 5 से 6 बजे तक पूजा ही पेश करेंगे आज का तोहर पसंद कार्यक्रम, और फिर 6 बजे आप समाचार बुलेटिन सुनिएगा, 6:30 बजे डेविड लेकर आएंगे आज का चाइनीज प्रोग्राम। और रात्रि की बेला में जो प्रोग्राम होंगे चाइनीज प्रोग्राम के बाद आप सुनिएगा आज का तेलुगु आज का तमिल प्रोग्राम युवासन से, 7:00 और 7:30 बजे आप सुनिएगा तेलुगु प्रोग्राम वंदना की प्रस्तुति में, शिरीष पेश करेंगे आज का मराठी प्रोग्राम 7:50 पर, 8:10 पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम होगा जिसे पेश करेंगी डॉक्टर अलका दनपत, फिर 8:40 पर समीर लेकर आएंगे आज का महफिल शब आज का उर्दू प्रोग्राम, फिर उसके बाद भोजपुरी तड़का भोजपुरी का प्रोग्राम होगा उषा की प्रस्तुति में रात्रि के 9 से 11 बजे तक, फिर 11 बजे से 12 बजे तक आप सुनिएगा आज का सुनहरे पल कार्यक्रम जिसे लेकर गिनीशा आने वाली हैं, और ये प्रोग्राम पुराने गानों का होता है, आप ज़रूर साथ दीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम में और हमारे रेडियो मॉरिशस के सभी प्रोग्रामों में, आपके लिए आपके मनोरंजन के लिए रेडियो मॉरिशस। चलिए ज़रा मनोरंजन का है ये सिलसिला तो लेकर आए हैं आपके लिए दिल का क्या कसूर का ये गाना आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़ें।

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: शादी करके मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
2: मेरे चांद के टुकड़े, मुझसे शादी करने के बाद तुम कुछ खोगी नहीं बल्कि सब कुछ पाओगी।
1: सब कुछ खो दूंगी शाम, वो लोग हमारी शादी होते ही तुम्हें मार डालेंगे।
2: मार डालेंगे?
1: हाँ।
2: मुझे कौन लोग मार डालेंगे?
1: हसमुख और उसका बेटा।
3: मैंने देखे लाखों।
0: रविवार 20 सितंबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म चांद का टुकड़ा, 1995 की ये मूवी चांद का टुकड़ा। टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: लेकिन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए तो।
5: हमारे यहाँ जिससे शादी की बात पक्की हो जाती है उसी दिन से लड़कियाँ उसे अपना पति मानने लगती हैं।
6: तुमने अमेरिका देखा है?
7: नहीं जी।
8: करती है मेरा इंतजार।
0: रविवार 20 सितंबर को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कितने दूर कितने पास, 2003 की ये मूवी अमृता अरोरा और फरदीन खान पर फिल्माई गई कितने दूर कितने पास।

तो फिल्मों का भी सिलसिला, मूवियों का भी सिलसिला एमबीसी आप तक पहुंचाता है। एमबीसी टीवी पर भी आपका मनोरंजन, एमबीसी रेडियो पर भी आपका मनोरंजन। चलिए अभी हम पेश कर रहे हैं सुबह का नजराना। नजराने में, इस नजराने में आपको सुनवाते हैं अमित कुमार का याग्निक का ये गाना।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: इस समय 7:51 हुए हैं। चलिए कहानी की बारी। कहानी ये एक गिलास के वजन पर है आधारित, पर है मनोवैज्ञानिक। एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने छात्रों से भरे कमरे में स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते समय मंच पर चक्कर लगाया। उन्होंने पानी का एक गिलास उठाया और पूछा, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ये गिलास कितना भारी है? दर्शकों में यानी छात्रों में जिन्होंने जवाब दिया, उन जवाबों में 8 औंस से लेकर 1 पाउंड तक के जवाब मिले। प्रोफेसर मुस्कुराई और बोली, इसका वास्तविक वजन चाहे जितना भी हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रहती हूँ। यदि मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़े रहूं तो यह हल्का है। यदि मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़े रहूं तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा, और यदि मैं इसे 1 दिन के लिए, 1 पूरे दिन के लिए पकड़े रहूं तो मेरा हाथ तो सुन्न हो जाएगा, मैं पैरालाइज्ड महसूस करने लगूंगी अपने हाथ से। कोई भी सिचुएशन हो, गिलास का तो वजन नहीं बदलता, लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़े रहती हूँ इसे उतना ही ज्यादा भारी महसूस करती हूँ। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? सीखा ये कि जीवन में तनाव और चिंताएं पानी के उसी गिलास की तरह होती हैं। उनके बारे में थोड़ी देर सोचे तो कुछ नहीं होता, उनके बारे में थोड़ा और देर तक सोचे तो वे दर्द देने लगती हैं, और यदि आप उनके बारे में सारा दिन सोचते रहें तो आप खुद को पैरालाइज्ड और कुछ भी करने में असमर्थ महसूस करने लगेंगे। गिलास को नीचे रखना याद रखें। याद रखें कि स्ट्रेस को तो हम अपने जीवन में आने से रोक नहीं सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, पर हाँ, अपने आप पर स्ट्रेस का असर कम से कम समय तक रखने की कोशिश ये तो हम ज़रूर कर सकते हैं। आपके जीवन में स्ट्रेस हो ही नहीं, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी दुआ है। लेकिन फिर भी अगर आता हो तो उसे अपने आप से, अपने दिल से दूर रखने की कोशिश करते रहिएगा, करते रहिएगा। आपके जीवन में सुख शांति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी स्ट्रेस से दूर रहने का एक तरीका तो म्यूज़िक होता ही होता है। चलिए ये म्यूज़िक आपके नाम करते हैं, ये गाना आपके नाम करते हैं, कुमार सानू याग्निक की आवाज़ों को। ये गाना नाजायज़ मूवी से लिया गया है। इस गाने के बाद आप सुन पाएंगे 8 बजे समाचार भोजपुरी में, जिसे अभी उदय लेकर आएंगे। उसके बाद मिलते हैं हम पैगाम आपके नाम शो में।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ल जा ई बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई की नमस्ते और आदा। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। कल गांव गुप के बाशिंदे समुद्र तट ले जाए होला रास्ता के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे खातिर एकत्र हो रहलन जा। ग्राम परिषद इ पर अपन चिंता जतैलन। स्थिति से अवगत होवे के बाद भूमि व आवास मंत्री शाकिल मोहम्मद परिषद के सदस्य लोगन से भेंट करे के और स्थिति के जायजा लेवे खातिर हो जा जयन जा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ई दिमास के रेजुवी में एगो ओपन डे आयोजित करता। फजर के 9 बज के आधा से दोपहर के 1 बजे ले आम जनता उस सब वस्तु सकियन जा देखे जे काला और मंगर 22 सितंबर के होवे होला नीलामी में पेश करल जाए। ये नीलामी के दूसर का संस्करण है जे उ जब्त करल गल संपत्ति पर आधारित बा। राष्ट्रीय सभा में खेल मोरिसिया के शामिल करे पर अपन विचार विमर्श के जारी रखल जाता। ई मामला के अध्ययन करे खातिर गठित कमिटी के अपन सुझाव विदा करे खातिर जनता के और कई गो हितधारक लोगन के संगे ई मंगर 22 सितंबर ले समय बा। सुझाव लिखित रूप से क्लर्क ऑफ नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टवेस के पता पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@govmu.org पर सकल जा विदा करे। ई परामर्श समिति के अपन काम से अगारी हुए आगे बढ़ावे खातिर ढेर गुजना के राय एकत्र करे के अनुमति दे। आज 20 सितंबर के हमनी मनावत है जा वर्ल्ड क्लीन अप डे माने विश्व सफाई दिवस। यही अवसर पर ही कचरा और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करे खातिर मॉरिशस में कई गो काम करल जाता। साफ सफाई अभियान से आगे की बढ़े के गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदत के एगो बदलाव के प्रोत्साहित करे के चाहेला और पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति जागरूकता के आर जस्ती मजबूत करे के चाही। त दूसर देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के ऐलान करलन कि उ जल्द ही एगो नवा AI सलाहकार के नियुक्त करियन और देश में एगो AI फोर्स के गठन भी करियन। हालांकि इस सब पहल कैसे लागू होए एकर बारे में आर जस्ती जानकारी नहीं बाती। एकरेवे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाभल ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: अब मरने की खबर सुने जा। मोसलमान VRS नंबर 2 एमिताज फिनिक्स में मोसलमान VRS नंबर 2 एमिताज फिनिक्स में 3 कोरी 12 बरिस के स्वसंदूजों के श्री रामराज दौलत जिनकरा सब लोग गौसों के नाम से जस्सी जाना था लंजा उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माठी आज सपहर के 3 बजे ओकर घरे वे से मोसलमा VRS नंबर 2 एमिताज फिनिक्स से उठा के कार्यक्रम खातिर सेकोन्स्टांस की शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। लाकू देवो पेची व्याजे सैं पियामें 4 कोरी 11 बरिस के 91 ओंजों के श्री सुखदेव असेनी जिनकरा सब लोग वासुदेव के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर घरेवे से लाकू देवो पिची व्याजे सैंपिया से उठा के कार्यक्रम खातिर सैकोस्तों सैंपिया की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। सुकारा लेन ब्रिजे व्याजा में 2 कोरी 14 बरिस के सेकंड 4

0: के श्री विश्वराज सुकाहा, श्री विश्वराज सुकाहा जिनका सब लोग मिमी के नाम से जैसे जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बातें, उनकर माटी आज दिन के 12:30 उनकर पत्नी श्रीमती अनिता सुकाहा के घरे सुकाहा लेन फ्रेजे व्याजय से उठा के क्रियाकर्म खातिर लावों छे किश्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे एट हाफ पास्ट नून एवेन्यू ओकिदे कैथो बोन में, एवेन्यू ओकिदे कैथो बोन में चार कोरी 11 बरिस के 91 के मिसिज फातमा बीबी महमूद सुरेफान, मिसिज फातमा बीबी महमूद सुरेफान पैदा शिनाम नहाबू और जिनकर सब लोग फातमा नहाबू सुरेफान के नाम से जस्सी जाना थलंजा गुजरगल हवन, उनकर जनाजा आज दिन के 12 बजे एवेन्यू ओकिदे कैथोबोन से उठा के सबसे पहले नमाज जनाजे खातिर कैथोबोन के मस्जिद ले जावल जाए, फिर दफनाए खातिर फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून बागो लेन अंग्रेमार्शियल में, बागो लेन अंग्रेमार्शियल में चार कोरी बरिस के 80 के श्रीमती इरावंती रिसल, श्रीमती इरावंती रिसल पैदाश नाम राम गुलाम और जिनकर सब लोग दादी माईबू के नाम से जस्ती जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बातें, उनकर माटी आज दिन के 11:30 उनकर बेटा पंडित अनिरुद्ध मिश्रा रिसल के घरे बागोलेन अंग्रेमार्शियल से उठा के क्रियाकर्म खातिर आले ब्रियों की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे एट हाफ पास्ट 11 AM बिस्वा लेन प्लेन मायों में, बिस्वा लेन प्लेन मायों में 50 बरिस के माने कि 2 कोरी 10 बरिस के श्री जितेन मुस्लिगाडू, श्री जितेन मुस्लिगाडू जिनकर सब लोग विनय के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनका मृत्यु हो गल बात है, उनकर माटी आज दिन के 11:30 उनकर घरेवे से माने कि बिस्वा लेन प्रेमायों से उठा के क्रियाकर्म खातिर हौजुबे की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे एट हाफ पास्ट 11 AM रॉयल रोड बुले रूज फ्लैक में, रॉयल रोड बुले रूज फ्लैक में 4 कोरी 14 बरिस के 94 के श्रीमती हमम मिसिज हनाम मसूदी, मिसिज हनाम मसूदी पैदाशी नाम सुहादत और जिनकर सब लोग दादी कैरून के नाम से जस्सी जाना थलंजा गुजरगल हवन, उनकर जनाजा आज दिन के 10:30 उनकर घरवे से उनकर मकानवे से माने वायल खुद बुले रूज फ्लैक से निकाल के दफनाए खातिर ग्रीष्म का कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 10 AM तो जितना जुन परिवार दुख में हवन जा, दुख के ई बखत में MBC के बगल से सब कोई के हमनी सहानुभूति प्रकट करत है। सर
1: 819 kHz पर Radio Mauritius. La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: Subha ka nazrana, Radio Mauritius.

इस समय 8:09 हुए हैं। हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। सुबह का ये नजराना है, इस नजराने में पैगामों का भी नजराना हम पेश करते हैं। सुबह का नजराना में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैगाम आपके नाम, और पैगाम आपके नाम का

कार्यक्रम में तो आप जानते हैं हम आपके संदेश से पढ़ते हैं, हम आपके संदेश से भेजते हैं आपके अपनों तक, आपके दोस्तों, आपके परिवारों के बीच में अगर कोई इवेंट हो तो बेशक हमारे इस प्रोग्राम में आप अपने अपनों के नाम संदेश भेजिएगा, या तो मैसेजेस के ज़रिए या फिर कॉल्स के ज़रिए। मैसेजेस के लिए 5251705 है नंबर, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 नंबर है। आप अपनों के दिल में एक प्यारी सी खुशी जगा दीजिए, उनको एक संदेशा भेज कर रहा। हमारे साथ है देवी जी। वैसे भी देवी जी ने हमारे लिए एक प्यारा सा संदेशा भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी आपके एंकरेजमेंट के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए। माला सुमारू जी भी हमारा साथ दे रही हैं सुबह से, और विश्वानी जी तो रोड्रिग्स में है। विश्वानी दुमन जी अभी वाकवा में थोड़ी ना है विश्वानी जी अभी रोड्रिग्स में छुट्टियाँ मना रही हैं, बहुत बहुत प्यार से, बहुत बहुत खुशी के साथ अब अपना ये पल मनाइएगा। वैसे भी हमेशा विश्वानी जी हमें चाय पर इनवाइट करती है, भाई आज भी इनवाइट कर दिया विश्वानी जी, ऐसा मत कीजिए, हमको तो टिकट करना पड़ेगा इस चाय के लिए। थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ हमारे हैं त्रियोले के सूरज शर्मा सजादा जी, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। चलिए ज़रा हम अपने पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में आशा जानू जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आशा जानू जी का जन्मदिन था कल, और जन्मदिन की खुशियां अभी कहाँ ख़त्म होने वाली है, अभी तो पूरा हफ्ता मनाया जाएगा ये जन्मदिन। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आशा जानू जी। चलिए ज़रा हम मैसेज पढ़ते हैं मौदालबिया की अनीता जी की का। अनीता जी कह रही हैं कि उनकी भतीजी खुशी ईतू की सालगिरह है, और उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं मिल रही हैं पूरे परिवार की तरफ से, पापा संजीव, मम्मा चंदा की तरफ से, बहन दीपशिका, दिशा की तरफ से, भाई केशवीर की तरफ से, तीन फूफू हैं, सभी मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं, चाचा की तरफ से लालजी परिवार, गोगा परिवार, नागेश्वर परिवार की तरफ से खुशी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

अनीता जी ने फ्री ऑफ लक से हमारा साथ दिया है, मतलब दे रही है अनीता जी हमारा साथ फ्री ऑफ लक से। सुदेवी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत मंगल कामनाएं भेजी हैं इस संडे की, और हर किसी को बर्थडे विश किया है जिनका है बर्थडे आज। और अभी इधर आइला बाई जी ने फ़ोन किया और बताया कि उनके कज़िन अनिल रामा जी जो श्वाजी रहते हैं अपना 60th बर्थडे मना रहे हैं। अवर हैप्पी बर्थडे टू यू अनिल रामा जी, आपको शुभकामनाएं आइला बाई जी की तरफ से मिली है, आपकी पत्नी रागिनी की तरफ से, बेटे आकाश और रोबी की तरफ से, आपकी मम्मा ईश्वंती

की तरफ से, भाई सुनील की तरफ से, आपकी बहनें फून और लालिनी की तरफ से, नाती रीत की तरफ से और दोनों नातियों की तरफ से, दो बहुओं की तरफ से और पूरे रामा परिवार की तरफ से, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अनिल रामा जी।

मैसेजेस के बीच हमें मैसेज प्यारा सा मिला है लक्ष्मण सिंह गोविंद जी का। उन्होंने संडे ग्रीटिंग्स कन्वे किया है क्लेफोम प्रोग्रेसिव शिव मंदिर के सभी सदस्यों को जो नवरात्रि दुर्गा पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। ये पर्व उन लोगों के लिए मंगलमय हो, उनके पूरे ग्रुप के मेंबर्स के लिए मंगलमय हो। पंडित संजय नारायण जी की तरफ से और लक्ष्मण सिंह गोविंद जी की तरफ से। और ये है पैगाम आपके नाम, पैगाम हमें लीला जी की तरफ से भी मिला है। बौशरी की लीला जी का कहना है कि उनके भतीजे नीतीश की याद में पूरा परिवार आज उनको याद कर रहा है। नीतीश की मम्मा तारा की तरफ से, पापा धानन की तरफ से, चिकोही परिवार और लोचन परिवार की तरफ से। बस ये दुआ है कि जहाँ भी रहे खुश रहे, बहती हवा सा वो बहुत ही शांत रहे।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: सुबह सुबह की ये बेला है, आप संडे की सुबह को बहुत ही प्यार से इत्मीनान से मनाइएगा। ये सुबह बहुत ही प्यारी होगी आपके लिए, ऐसी दुआ लेकर आए हैं हम। और ऐसे में 8:33 जो हुए हैं, पैगाम आपके नाम प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं हर संडे की सुबह की तरह। तो चलिए ज़रा हम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं प्रदीप बट्टू जी को, जो खफके के रहने वाले हैं। प्रदीप बट्टू जी को बहुत सारी मंगल कामनाएँ उनकी पत्नी चांद की तरफ से मिली है, बेटे बहू की तरफ से, बेटी दामाद की तरफ से, नातिन हर्षिता और नोविता की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रदीप जी।

जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं ज्ञान चताहू जी भी, जो मोदे नहीं, ज्ञान चताहू जी बेशक जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं, जो मोदे से वाकवा रहते हैं, ज्ञान चताहू जी के बेटे का जन्मदिन है, सो खुशियों में पूरा परिवार तो शामिल है ही है। उनकी माता जी फिफी उनको जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही हैं, जो उनके साथ हैं अभी मलेशिया में।

मतलब किगन अपना जन्मदिन मना रहे हैं, वे मलेशिया में हैं अपनी मामा फीफी के साथ। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू किगन। सो ज्ञान चतारू जी, उनके पिताजी, उनके भाई कुनाल, फिर है नवना और साथ में चीना, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू किगन। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके जीवन में खुशियों का सिलसिला हमेशा बरकरार रहे और आपके जन्मदिन पर आपको हमेशा हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार मिले और उसके बाद भी ये प्यार दुगना

है ये पैगामों का सिलसिला, है ये पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। हम सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं और आपके पैगाम आपके अपनों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बर्थडे का ये पैगाम पहुंचाते हैं हम गिविया देख रहे होल तक। मनीषा जी अपना बर्थडे मना रही हैं गिविया देख रहे होल में, उनको मंगल कामनाएं संध्या जी भेज रही हैं। नितिका, वेदांत, उनकी मामा उमा और पापा संजीव जी बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं, मामा और दे रहे हैं पापा भी। और मंगल कामनाएं ये हैं कि वे हमेशा तरक्की की राह पर चलती रहे। हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मनीषा जी।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना में हम आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं पैगाम आपके नाम, और पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आपके अपनों के नाम हम संदेश आपकी तरफ से पेश करते हैं। इधर हमें फ़ोन किया है इंदिरा जी ने, लिखा जैन क्यू पिप से, उनके बेटे दीपक आए हुए थे, दीपक मोहन आए हुए थे छुट्टियों के लिए हमारे देश में, अपने देश में, और अभी वे विदेश जा रहे हैं। और इंदिरा जी को बड़ा बड़ा सैड महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी दिल बड़ा है उनका। दिल ये कहता है कि ए बेटे, तू जा अपनी प्रगति की राह पर, आगे बढ़ता जा। ये आशीर्वाद है मामा इंदिरा जी का बेटे दीपक मोहन जी के लिए। और दीपक जी के भतीजे चेतवीर भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं, बहुत बहुत प्रगति की दुआएं दे रहे हैं। उनकी बहन शर्मिला, फिर हैं विकास और आदेश, सभी मिलकर ओवो तो कह रहे हैं, और ओवो कहते हुए ये उम्मीद भी है उनकी आंखों में कि अगली बार

फिर मुलाकात होगी। दीपक जी विदेश आज जा रहे हैं, अगर जाना हुआ है तो आना भी तो होगा। आप आइए, आपके इंतज़ार में पूरा परिवार आपको विदाई दे रहा है और माँ का आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा रहेगा।

ये है आपकी पसंद कार्यक्रम हर चंदा हर सूरज के लिए यही दुआ है कि हमेशा गगन में उड़ता रहे, गगन में अपना अपनी रोशनी फैलाता रहे, रोशन रहे हर बच्चे की के ये दुनिया, हर माँ बाप की तरफ से दुआएं यही।

होती है। आ गए हैं हम अपने कार्यक्रम के अंत तक, और अंत में हम 18 सितंबर को जन्मदिन मनाने वाले पूनम और अमरीश को जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हैं। पूनम और अमरीश को मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से मिली है, अवनीश की तरफ से, लोबित फैमिली और तपसी फैमिली की तरफ से, और बेशक हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसी दुआओं के साथ आपके नाम करते हैं हम एक ऐसा गाना जिसमें आप अपने अपनों का प्यार, अपने अपनों की झलक महसूस करेंगे। अपने मूवी का ये गाना आपके नाम करते हैं हम। पूनम जी और अमरीश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बस इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का पैगाम आपके नाम कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनिएगा संक्षिप्त समाचार, उसके बाद सुनिएगा आज का मंगल आचरण कार्यक्रम जिसे पेश करेंगे विकास गौर। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ दिन, शुभ संडे, नमस्कार।

0: Dive Check 9 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदोए। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा में खेल मुगिसियों को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने की दिशा में गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोटवेसा के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रेजू में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है, सुबह 9:30 से दोपहर के 1 बजे तक। आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। कल गांव के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थिति से अवगत होने के बाद भूमि व आवास मंत्री शाकिल मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने व स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर जाने वाले है। आपको बता दें कि मंत्री का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इस बात से इनकार करते हैं कि ये विकास सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच की कीमत पर हो। वे याद दिलाते हैं कि कुछ लीसेस साल 2014 के चुनावों से पहले और पुरानी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे। उनका उद्देश्य सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच को बहाल करना और मॉरिशनों को तट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति देने के लिए नए रास्तों की पहचान करना है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग के काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा। सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिसाइल के रास्ते पर ही रोक दिया था। उधर कैरेबियन सागर में ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक तेज रफ्तार जहाज पर अमरीकी सेना ने हमला किया। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई। अमरीकी दक्षिणी कमान ने बताया कि ये कार्रवाई 19 सितंबर को जोन टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर के निर्देश पर की गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड पोलोंजी में 78 साल के 78 years old के श्री बासुदेव मगन, जिन्हें सब लोग रोहित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े नौ बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड पोलोंजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM शिवाजी रोड पुजदी फ्लैक में 70 साल की 70 years old की श्रीमती राजकुमारी बिस्तुनुत, जिन्हें सब लोग चिकिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के 10 बजे उनकी बहन श्रीमती फूलमणि बिस्तुनुत के घर श्वाजी रोड पुजदी फ्लैक से उठाकर

0: कर अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पुजीफला किशमुशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टूडे एट 10 AM। पायों के रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में, पायों के रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 61 साल की 61 years old की श्रीमती बिमला गुप्ता, पैदाशी नाम रामबोजू और जिन्हें सब लोग कविता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के नौ बजे उनके बेटे श्री ईरेश गुप्ता के घर पायों के रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कोंडु मास्क किशमुशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: This is Radio Mauritius.

0: AM2 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। रविवार का दिन, कार्यक्रम है मंगलाचरण, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता सत्यम चमन जी और भारत से आए स्वामी आशुतोष परिव्राजक जी। आपका स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने वाले हैं, और आज इस कार्यक्रम में वैदिक धर्म पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मंत्र पाठ के साथ।
1: ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे मंगलमय गुण कर्म पदार्थ

ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घत घत में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः

य ईर्षे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगताई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये

वस्तु वयम श्याम पतयोरैनाम। तुझसे बरा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जर चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है।

प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु।

0: युयोध्यस्मज्जुहुरानमेन भूयस्थान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश हे प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निस दिन रते तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, दीजे यही विशद वरदान। ओम शम। मंगलाचरण के सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हमारे मध्य में भारतवर्ष से पधारे हैं स्वामी आशुतोष जी परिव्राजक। स्वामी जी के साथ आज एक ज्ञानवर्धक वार्तालाप करेंगे। नमस्ते स्वामी जी।
1: नमस्ते।
0: आपका स्वागत है। स्वामी जी, आप आर्य सभा के निमंत्रण पर कई बार वेद प्रचार कार्य के लिए मॉरिशस आए हैं। कृपया स्वामी जी, आप हमें तथा श्रोताओं को बता सकते हैं कि जब आप प्रथम बार मॉरिशस आए थे और इस बार जब आए हैं तो धार्मिक कार्य में क्या परिवर्तन आया है?
1: ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधो। इस मंगलाचरण कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। जैसा प्रश्न किया गया, ये मेरी पांचवी यात्रा है और यहाँ बहुत कुछ परिवर्तन देखा गया। धार्मिक कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोग प्रयत्न करते हैं, मीडिया का प्रयोग हो रहा है, लोग इसके माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब आदि माध्यम से सब अच्छा है। पर हम ये देखते हैं यहीं नहीं, पूरे विश्व में जैसे मौसम बदलता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है। लोगों में जो पहले पवित्रता थी, धार्मिकता, सादगी, सरलता, उपदेश सुनने की प्रवृत्ति होना, सेवा भाव, इन जो दिव्य गुणों में कुछ कुछ कमी आ रही है। लोगों में जो बाह्य वृत्ति है, एक्सट्रोवर्ट, वो बढ़ रहा है। लोग अंतर की ओर जप ध्यान लगाना, लंबे लंबे काल उपासना करना, सुनना, ये प्रवृत्ति लगभग सर्वत्र कम हो रही है, जबकि

0: वस्तुतः हम आत्मा हैं, हमारा निवास देह के अंदर है, हमारा परमात्मा सर्वव्यापक है, पर उसकी उपलब्धि अंदर होती है। तो ये सारे शास्त्रों का उपदेश का सार ये है कि व्यक्ति स्वयं को जाने, मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचाने, अपने आधार परमात्मा को जाने, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए, माइंड कंट्रोल, मन को पवित्र बनावे, क्योंकि वेदों का यही सार है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम सबका मन शिव संकल्प वाला हो। इसके परिणाम क्या होते हैं, व्यक्ति को फिर जो बाहर की स्थितियां हैं, संबंध विच्छेद, कहीं विवाद है, ये सारी विपत्तियां जो आती हैं तब आती हैं जब हमारा मन में देवत्व तो कम हो जाता है। इसलिए वेदों का यही सार है, उपदेश का यही सार है कि हम लोग अपने मन में देवत्व को बढ़ावें, अपनी बुद्धि को और निर्मल पवित्र बनावें, क्योंकि बुद्धि वह हमारा साधन है, भगवान का दिया अनुपम साधन। बुद्धि को बोलते महतत्व, सृष्टि का पहला उत्पादन जो हुआ सृष्टि में उसका नाम महतत्व है। इस बुद्धि की पवित्रता के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उपदेश सुनते हैं, जो भी क्रियाकलाप है उसका ये फल होता है कि हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए। जो बुद्धि सत्य सत्य का बोध कराने में समर्थ हो, विचारक लोग कहते हैं बुद्धि से हम क्या क्या कार्य कर लेते हैं, पृथ्वी के परमाणु से लेकर के परमात्मा तक पदार्थों का हम विवेचन करके निर्णय निकाल लेते हैं, नीर क्षीर विवेकी बन करके किस में क्या सामर्थ्य है, किसकी क्या योग्यता है, जिसको हमारे समाज के नियम बोलते हैं सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, अर्थात जिसका जितना मूल्य है उसको उतना सम्मान देना। हमारे जीवन में सबसे महान परमात्मा है, हमारे जीवन वेदों का बहुत महत्व है, वेदों की विद्या। इसी प्रकार जीवन में ऋषियों के उपदेशों का, ग्रंथों का बहुत ऊंचा सम्मान देना। ऐसे करते करते बुद्धि का हमारा प्रयोजन पूरा होता है। इसी बुद्धि से हम अपने परमात्मा को जान करके मुक्त आत्मा बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं और नितांत मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रश्न का सार दिया गया कि हमें निरंतर प्रगति करते रहना है। ऐत्रेय ब्राह्मण का वाक्य है, चरई वैति, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य मंजिल ना मिल जाए। थोड़े में संतोष ना कर लेना कि हमने सुन लिया है, जान लिया है। जब तक विद्या जीवन का हिस्सा ना बन जाए, जीवन में उतर ना जाए, तब तक प्रयत्न करते रहना है। ये मेरा आप लोगों के लिए यही भाव है कहने का कि आप लोग अपनी विद्या को बढ़ाएं, तपस्या को बढ़ाएं, स्वाध्याय को बढ़ाएं और ईश्वर भक्ति को बढ़ाएं, तो जीवन में बहुत अधिक पवित्रता होगी, बहुत अधिक संतुष्टि होगी, शांति होगी और जीवन में प्राप्तम प्रापणीयम, जो अंतिम लक्ष्य का उद्देश्य है, प्राप्तव्य को पा लेना, ऐसा अनुभव होता रहेगा। ओम।
1: आपके इस सद्विचार के लिए बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कृपया स्वामी जी, और एक प्रश्न है, और दो तीन प्रश्न हैं स्वामी जी, लेकिन मैं दूसरे प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। महर्षि दयानंद के कथन अनुसार एक मनुष्य के जीवन में तीन गुरु को महत्व दिया गया है। प्रथम गुरु माता, द्वितीय पिता और तृतीय गुरु यानी शिक्षक। इसके आधार पर क्या आप हमें माता पिता का अर्थ बता सकते हैं?
0: ओम। ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। जिसकी माता विदुषी धार्मिकी प्रशस्ता सब गुणों से संपन्न है, उसका पुत्र, उस माँ का पुत्र विद्वान विचारशील तपस्वी विवेकी बनता है। यानी जीवन के निर्माण में पहला निर्माता माँ को बोला गया, माता निर्माता भवती। दूसरे क्रम में पिता, जो हमको विविध प्रकार से पालना करते हैं, आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, तो पिता का बहुत बड़ा स्थान है। पाति रक्षति सा पिता, जो हमको दुर्गुणों से दूर बचाते हैं, दूर रखते हैं, सद्गुणों से जोड़ते हैं,

कर्तव्य का बोध कराते हैं, सृष्टि में हमको कैसे किससे लाभ लेना है इसका बोध कराते हैं। तो माता पिता के बाद में तीसरे क्रम में गुरु आचार्य आते हैं। जैसा निर्माण पहले माता ने कर दिया है, पिता ने कर दिया है, अब गुरु के लिए उतनी सुगमता होती है। गुरु कर्त करते हैं, यो गृणाति उपदिशति स गुरु, जो हमको अधर्म से

माता पिता और जो आचार्य हैं, तीनों के मिलने से हमारे जीवन में समग्रता आती है। अर्थात हमारी शारीरिक उन्नति होती है, हमारी इंद्रियों का विजय होता है, हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, हमारी बुद्धि निर्मल होती है और हम अपनी आत्मा में अपने परमात्मा का बोध करते हैं। यह कार्य तीनों गुरुओं के मिलने से होता है। जब गुरुओं के जीवन में वेद विद्या का पठन पाठन होता था, बहुत लंबे लंबे काल साधना करते थे, तो माता पिता गुरुओं के जीवन में परमात्मा के दिव्य गुण आ जाते थे। यानी माता भी देवता है, पिता भी देवता है, आचार्य भी है, तीनों का जो एक ही भाव है, अर्थात तीनों का मिलना है, संगम है, ये जीवन में सद्गुणों का संगम कर देता है। मनुष्य की उन्नति का अंतिम पराकाष्ठा मानी गई है कि तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति क्या बनता है, मनुर्भव, मनुष्य बनता है। मनुष्य की परिभाषा क्या है, मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करता है, उसके हानि लाभ को जान करके दोषों को छोड़ता है और गुणों को धारण करता है। इसी को और भाषा में विवेक नाम दिया। विवेक है कि सत्य असत्य का परीक्षण करते हुए जो प्रमाणों से असत्य सिद्ध हुआ है उसको उसी क्षण तत्काल छोड़ देना और जो सत्य सिद्ध हुआ है उसको तत्काल ग्रहण कर लेना। इसको महर्षि के जैन कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आज हम वर्तमान में देखते हैं कि बच्चे लोग उतने अनुशासित नहीं रहते हैं, स्वच्छंदता होती है, उच्छृंखलता होती है, उसमें इन तीनों जो निर्माता हैं, स्तंभ हैं, इनका ठीक सेवन नहीं किया गया अथवा इन तीनों के योग्यता में कुछ कमी रह गई, इन्होंने अपने आप को निर्मित नहीं किया, क्योंकि निर्मित व्यक्ति ही निर्माण कर सकता है। जब कहते समाज बिगड़ गया तो दृष्टि जाएगी, क्यों बिगड़ गया, माँ ने निर्माण नहीं किया जितना करना था, पिता ने निर्माण नहीं किया, गुरुओं ने ठीक निर्माण नहीं किया, तो इसका दुष्परिणाम उस जीवात्मा पर आता है, क्योंकि जो तीनों के संग रहा, तीनों को देखा समझा जाना। विचारक लोग कहते हैं, माता पिता का जीवन बालक के लिए खुली पुस्तक के समान होता है। माता पिता जो कुछ करते हैं पुत्र उनके क्रियाकलाप को देख करके सीखता है। इसलिए ऋषियों ने मर्यादा दी है कि माता पिता गुरु लोग इस प्रकार का जीवन जीवें कि उनके पुत्र शिष्य पर इतना प्रभाव पड़े कि मेरे माता पिता मुझको निर्मित किया है, मेरा निर्माण किया है। एक वेद मंत्र आता है, बड़ा सुंदर भाव है, वहाँ पर यह संकेत है कि पुत्र गौरव का अनुभव करता है माता के प्रति, पिता के प्रति, कि मुझको जो शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, जो भोजन मिला ज्ञान रूपी, उसके कारण से मैं कैसा हूँ, मैं मनस्वी हूँ, मैंने मन को जीता है, मैंने सृष्टि के पदार्थों का बोध किया है और मैं स्वयं में संतुष्ट हूँ, मैंने आत्मा का बोध किया है। ऐसे भाव को कौन अनुभव करता है जिसकी माता ने उसको लोरियाँ सुनाई हैं कि पुत्र तुम कौन हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम अमर हो, अजर हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसी शिक्षा जिनको मिली माता पिता से, वही लोग आगे चल करके महानायक बनते हैं, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो या विद्या के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में होंगे वो सदा कैसे होते हैं, अपराजित होते हैं। इसलिए इन तीनों का बहुत महत्व है और तीनों को स्वयं निर्मित होकर निर्माण करना यही विधा है। पहले स्वयं का निर्माण करना, फिर औरों को बनाना। आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर जग का सुधार करें। सभी श्रोता लोग ऐसा विचार करें, जो जहाँ पर खड़े हैं अपना निर्माण जितना अच्छा हो जाएगा उतना हमारा परिवार अच्छा बन जाएगा, फिर समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने निर्माण पर अत्यधिक बल देना चाहिए। एक जलता हुआ दीपक बहुतों को प्रकाशित कर देता है, पर बुझा दीपक एक को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए माता की गरिमा है विद्या धर्म आचरण में, पिता की गरिमा उनके ज्ञान विज्ञान में, और गुरुओं का जीवन ही

0: ज्ञानमय होता है, विज्ञानमय होता है, तो सभी लोगों के जीवन में परमात्मा की दिव्य कृपा हो, सबके जीवन में भरपूर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, उपासना हो, तभी हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को एक अच्छी दिशा दे करके उनको एक मार्ग दिखला सकते हैं, गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। ओ,
1: आज मंगलाचरण कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आर्य सभा मॉरिशस। वैदिक धर्म पर आधारित ये कार्यक्रम है और श्रोताओं, हम यही आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए अभी चलते हैं एक भजन की तरफ और उसके बाद वापस इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं।

0: माता पिता के कर्तव्यों पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला स्वामी जी। पुनः आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जिज्ञासु बन करके। आर्य समाज में व्याकरण के सूर्य, वेदों के प्रकांड विद्वान एवं महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद दंडी की पुण्यतिथि 14 सितंबर को थी। आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए स्वामी जी।
1: गुरु विरजानंद सरस्वती जी की जो पुण्यतिथि 14 सितंबर पर, उनको हम विनम्र नमन करते हैं। जो गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वेदों के भाष्य किए, धन्य है वो गुरु जिन्होंने ऐसे महान शिष्य को जन्म दिया, विद्या से जन्म दिया। दो प्रकार का जन्म होता है, एक माता पिता के द्वारा औरस जन्म कहलाता है, दूसरा है विद्या गुरु आचार्य और विद्या माँ के संसर्ग से जो जन्म होता है उसका नाम है विद्या जन्म, तभी द्विज नाम से कहा जाता है। तो इनका जो जीवन था बड़ा त्याग तपस्यामय जीवन, आंखें तो नहीं थी परंतु प्रज्ञा चक्षु खुले हुए थे। उनको वैदिक साहित्य में व्याकरण में बहुत प्रकांड योग्यता थी, कहते हैं उनको व्याकरण का सूर्य। कम लोग जानते हैं उनका जो इतिहास पीछे से है, मैंने कहीं पढ़ा ये चार ऐसी कड़ियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने देश को स्वराज्य के लिए एक मंत्र दिया,

प्रथम नाम आता स्वामी ओमानंद जी, उनके शिष्य नाम स्वामी परमानंद जी, उनके शिष्य स्वामी विरजानंद जी, उसी क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती। ये चार परंपरा है, स्वामी ओमानंद जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी विरजानंद जी, स्वामी दयानंद जी। इन्होंने जिस हमारा देश भारत देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, ये महाविद्वान थे, वेदों के विद्वान थे। इन्होंने जनमानस में वेद विद्या को पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया। और स्वामी विरजानंद जी ने अपनी पाठशाला मथुरा में रह करके वो व्याकरण पढ़ाते थे। अनेक शिष्य उनके पास पढ़ने आए, परंतु गुरु की चक्षु ने एक को पात्र समझा कि दयानंद में जो प्रतिभा है, जो सामर्थ्य है, अनोखा है। एक घटना सुनी जाती है कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ने के लिए पाठशाला में दो दिन के लिए नहीं आए। गुरु सोचते क्या बात, आया क्यों नहीं। दो दिन के बाद आते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरुवर में दो दिन पाठ पढ़ने नहीं आया। कुछ ऐसी घटना घटी, में अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए बैठा चुपचाप। क्या घटना घटी, वो यमुना किनारे बैठ के ध्यान लगाए के लिए ध्यान में मग्न थे, समाधि में। कोई महिला नहा करके नदी से आ रही, देखा कोई महात्मा बैठा हुआ है, उसने उनका चरण स्पर्श करने की यत्न किया तो कुछ बाल से पानी की बूंदे गिर गई शरीर पर, एकदम चौंक गए, माता। तो वो दो दिन तक अपना निरीक्षण करते रहे, मेरे मन में किसी प्रकार का जो है नारी के प्रति राग तो नहीं, मोह तो नहीं है। इतना उनका अखंड ब्रह्मचर्य, इतना ऊंची साधना उन्होंने गुरु को बताया, इसलिए दो दिन तक मैं पढ़ने नहीं आया, मैं ध्यान मग्न होकर अपना निरीक्षण करता रहा, मेरे मन में संसार के प्रति कोई कामना तो नहीं है। इस भाव को सुन के गुरु विरजानंद ने यह समझा, जो ऐसा युवक ऐसी भावना ब्रह्मचर्य के प्रति, ये व्यक्ति संसार को बदल सकता है, इसमें अनोखा सामर्थ्य है, ये मेरे कार्य को करेगा। तो गुरु की जो प्रज्ञा चक्षु ने उनको देखा कि दयानंद में जो योग्यता है, जो प्रतिभा है, कितनी सारी घटनाएं आती हैं, उन्होंने उनको योग्य से समझा और उनको जो विद्या पढ़ाई उसमें कुछ भागे बहुत विशेष थे। गुरु विरजानंद जी को उस काल में आर्थ अनार्थ की बहुत गहरी पकड़ थी, आर्थ ग्रंथ क्या है, अनार्थ ग्रंथ क्या है, और वो कहते थे आर्थ ग्रंथ ऐसे हैं जैसे कि एक गोता लगाना और अनमोल मोतियों को पा लेना, अनार्थ ग्रंथ पढ़ना ऐसा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो सबको यही प्रेरणा करते थे, आर्थ ग्रंथों का प्रचार करो, इनका पठन पाठन करो, अनार्थ ग्रंथों को मत पढ़ो। और उनके अंदर भावना थी, उस काल में अंग्रेजों का शासन था, वो चाहते थे कि जो व्याकरण की विद्या है इसको पूरे देश में, जैसे सरकार के मानते लेकिन उसको व्यापक रूप पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें जो विद्या है, आस्त विज्ञान है, इसके द्वारा व्यक्ति मनुष्य बनता है, योगी बनता है, संसार का उपकार करता है और जीवन की सफलता होती है। तो गुरु विरजानंद जी को बहुत गहरा ज्ञान था वैदिक वाङ्मय का। उन्होंने महर्षि को ऐसे ऐसी कड़ियाँ सुलझाई जो उनको इतने लंबे काल के साधना काल में कहीं कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई थी सिद्धांतों में, उन्होंने उनको यही ज्ञान दिया कि जो हमारी पढ़ाई है, चार वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अंगोपांग, इनको पढ़ने से व्यक्ति पूरा मनुष्य बन जाता है। ये वो विद्या है जो प्राचीन काल में मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी पढ़ते थे, योगी कृष्ण ने पढ़ाई की थी, ये सब लोग इस विद्या को पढ़ते थे। तो गुरु विरजानंद जी ने अपने जीवन काल में आर्थ विद्या को बहुत पढ़ाया, प्रचार किया। और वो राजाओं को भी कहते, अलवर नरेश के पास जाते थे, जयपुर नरेश को पत्र लिखते थे, सबको कहते थे कि किसी प्रकार से ऐसी योग्यता बनाओ आप लोग कि पूरे देश में आर्थ विद्या का पठन पाठन बढ़ जाए। एक उनका और बहुत प्रिय वाक्य था, वो कहते थे दयानंद, संसार आर्थ को भूल गया है, क्योंकि अनार्थ ग्रंथों में ईश्वर की और ऋषियों की निंदा मिलती है, जबकि आर्थ ग्रंथों में ईश्वर की और ऋषियों की बहुत प्रशंसा है। इसलिए तुम जीवन में संकल्प लो कि आर्थ ग्रंथों का ही प्रचार करोगे, इन्हीं पर व्याख्यान देना, इन्हीं पर व्याख्यान के साथ लेखन कार्य करना। धन्य गुरु के शिष्य दयानंद सरस्वती जी ने जो संकल्प लिया, पूरे जीवन वो आर्थ ग्रंथों का प्रचार करते रहे, लेखन कार्य किया, वेदों का भाष्य किया। और उन्होंने एक और सूत्र दिया,
स्वराज्य के लिए। कहते हैं कि उनका वाक्य था।

0: था गंगा धरती का, परंतु उसके बहुत पहले महर्षि ने कहा था स्वराज्य, अपना स्वराज्य, वैदिक स्वराज्य की उन्होंने परिकल्पना की। इसमें जो पीछे की परंपरा थी, इन सभी लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे महान स्वामी विरजानंद जी को हम प्रणाम नमन करते हैं, जिन्होंने स्वयं जीवन में आर्ष ग्रंथों का प्रचार किया और लोग जनमानस के अंदर भी इसका प्रचार करने का प्रयत्न किया। अपने काल के राजाओं को भी पत्रों के माध्यम से जा के उनको प्रेरणा देते थे कि तुम लोग चरित्रवान बनो, धार्मिक बनो। एक घटना और आती है, अलवर नरेश आए कि महाराज हमारे साथ चलो और हमारे वहाँ पर हम व्यवस्था देंगे, हमारे संस्कृत का पाठ पढ़ाना। उनका हम चलेंगे, आपको पढ़ाएंगे, जिस दिन आप पाठ नहीं पढ़ेंगे हम छोड़ के आ जाएंगे, ये वचन तो हम चलेंगे। तुम वचन दो कि हम सरोज पढ़ने के आओगे तो हम तुमको पढ़ाएंगे, नहीं तो हम वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। तो वीरजान जी वहाँ पर चले गए, लंबे काल पढ़ाते पढ़ाते रहे। एक दिन उनके नरेश पढ़ने के लिए नहीं आए, शिष्य कहा चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतने वो नियम के पक्के थे, इतने दृढ़ थे। एक और घटना आती है कि उनको कैसे पता चलता था कोई चीज कहाँ लिखनी है, पेज खोल के निकाल यहाँ लिखा देखो। तो उनके शिष्य दोनों नदी पार कर रहे थे, तो शिष्य बोलते हैं महाराज आगे नदी है। तो उनको थोड़ा सा मन नहीं आया, ठहरो, स्वयं दो बार पार करके दिखा दिया, मुझको पता आगे नदी है। तो उनको ऐसी भगवान ने प्रज्ञा दी थी, ऐसी योग्यता दी थी कि आंखें नहीं थी परंतु उनको इतना ज्ञान विज्ञान था, दूरदृष्टि बड़ी भारी थी, उनकी परिकल्पना थी हमारा देश आज़ाद होगा और फिर से वैदिक व्यवस्था आएगी। और यही सारे भावना ने महर्षि को भर दिए, शिष्य को दयानंद सरस्वती तुम में वो सामर्थ्य है, तुम संसार को बदल सकते हो, तुम्हारा पूरा जीवन वेद विद्या के प्रचार के लिए समर्पित हो। ये उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगा था और महर्षि जी ने पूरा जीवन लगा करके इस कार्य को किया। धन्य है ऐसे योग्य गुरु और धन्य है ऐसे योग्य शिष्य दयानंद सरस्वती, जिनके पुण्य प्रताप से पूरे विश्व में आर्य समाज की वेदों की पताका लहरा रही है। परमपिता परमात्मा की दोनों अद्वितीय कहने चाहिए आशीर्वाद थे जिन्होंने हम सबको मार्ग दिखाया है।
1: स्वामी जी, गुरु विजयानंद के यहाँ अनेक शिष्य पढ़ने गए थे, सभी शिष्यों में केवल महर्षि दयानंद को ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। स्वामी विजयानंद जैसे गुरु के साथ ज्ञान प्राप्त करके बाकी शिष्य क्यों प्रसिद्ध नहीं हुए?
0: ओम, आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर ये है कि दीपक अलग अलग होते हैं और उनमें कितना तेल है, कितनी बाती है, कौन कितने घंटे प्रकाशित होगा। जलाने वाला एक ही व्यक्ति है, एक दीपक घंटे चलता है, एक आधे घंटे बुझ जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि दयानंद सरस्वती जी की अनेक जन्मों की बहुत गहन साधना थी, अनेक जन्मों से वो विद्याभ्यास करते करते आ रहे थे और उनको एक इशारा मिला गुरु विरजानंद जी का और वो सूर्य बन गए। वेद भी कहता है अहम सूर्य इवाजनी, जिसके जीवन में तपस्या भरपूर, विद्या भरपूर, वैराग्य भरपूर, ब्रह्मचर्य की अप्रतिम प्रतिष्ठा, सत्य के जो व्रति, इतने हम गुणों को देखते हैं, वो मूल से ही मूल शंकर से वही भाव आए थे। सत्य सत्य को जानने का भाव उनके मन में इतना गहरा था, जब भी जहाँ पता चल जाए ये असत्य है उसी क्षण छोड़ देना, पता चल गया असत्य है उसी क्षण पकड़ लेना। कई लोग कहते हैं जी हम जानते हैं ये बुराई है, छोड़ देंगे, आगे से करेंगे, ये टाल मटोल की भाषा होती है। उनके जीवन में उसी क्षण जब पता चला फिर दोबारा उस त्रुटि को नहीं करना। तो दयानंद सरस्वती जी की अनेक जन्मों की साधना, विद्या और जो अनुशासन उन्होंने पालन किया, गुरु को जितना सम्मान दिया, गुरु की विद्या को समझा, ये व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। एक शिष्य के, एक गुरु के अनेक शिष्य हुआ करते हैं, सबके अलग अलग पात्रता है। वेद में मंत्र आया है एक जलाशय है जिसमें हम घुटने पर पानी में खड़े होते हैं, एक जलाशय में हम छाती तक पानी में खड़े हो पाते हैं, एक में पूरा शरीर डूब जाता है। ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि का अलग अलग स्तर है, एक बुद्धि थोड़ा पकड़ती है, एक अधिक पकड़ती है, एक बुद्धि सराउंडिंग सब वो उसकी बुद्धि चलती है, विद्या में, धर्म में, आचरण में, प्रतिज्ञा पालन में। तो दयानंद सरस्वती जी

0: की योग्यता इतनी अधिक थी जिनको पाके गुरु भी धन्य अनुभव करते थे, और हम लोग भी ऐसे महान गुरु दयानंद को पा करके अपने आप को अनुभव करते हैं। काश उनसे साक्षात पढ़ने को मिलता, कितनी विद्या मिलती। मैंने महर्षि ग्रंथों को पढ़ के देखा, छोटा ग्रंथ रत्नमाला से लेकर के वेद भाष तक जितने भी लेखनों ने चलाई लगभग मैंने सारा कुछ पढ़ के देखा। पढ़ते पढ़ते जो बुद्धि का विकास हुआ, जो श्रद्धा बनी, जो विश्वास बना कि अगला पूरा जीवन वेद विद्या के लिए समर्पित होगा, ये जीवन भी समर्पित है। जब तक जीवन जीवन रहेगा क्या करना है, महर्षि ग्रंथों को पढ़ना है, पढ़ाना है, और इसी प्रकार लोगों को उनके मंतव्यों से समझाना है। महर्षि ने बहुत बड़ी खोज पूर्वक हमको विज्ञान दिया, चाहे वो पंचमहायज्ञ हो, अष्टांग योग के और अच्छे प्रकार उन्होंने प्रकाशन किया, और उन्होंने वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस सूत्र से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ और मैंने संकल्प लिया कि मैं चार वेदों को पढ़ूंगा। ईश्वर कृपा से मेरे लगभग थोड़ा सा बच रहा है, पूरा होने वाला है। चार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपांग, वेदांग, जो कुछ साहित्य मिलता है मैंने सबको पढ़ने का प्रयास किया। परिणाम क्या मिला, अपने सिद्धांत पर दृढ़ हो जाना। जीवन रहे न रहे, जो तीन काल में सत्य है उससे अडिग उसको इधर उधर होना नहीं। तो ये योग्यता हमको जो मिली महर्षि ग्रंथों को पढ़ करके, तो प्रश्न का उत्तर यह निकला कि उनकी योग्यता बहुत अधिक थी, उनका ज्ञान विज्ञान और उनमें जो सत्य ग्रहण करने के सामर्थ्य, उनका ब्रह्मचर्य और उनके जीवन में ऋषियों के प्रति अटूट श्रद्धा। वो कहते थे कि मैं वेदों को स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों को परतः प्रमाण मानता हूँ। जो चार वेद हैं वो सूर्य के समान स्वतः प्रमाण हैं, उनमें कोई त्रुटि की संभावना ही नहीं है, वह अनादि अनंत परमात्मा का ज्ञान है। उन्हीं का वाक्य है, जैसे परमात्मा सर्वज्ञ हैं ऐसे उनकी रचना वेद भी ज्ञानमय हैं, जैसे परमात्मा बहुत महान है ऐसे उनकी संस्कृत भाषा भी अत्यंत सुखदायिनी है। तो उनके वाक्यों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। अस्तु, हम उन ऋषिवर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने वेद विद्या को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, जो शुद्ध है शुद्ध को शुद्ध रूप में, अशुद्ध का शुद्ध रूप में। अस्तु ओम।
1: वक्त अपनी रफ्तार को पकड़कर आगे चलता जा रहा है और ज्ञान रूपी दीपक अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता जा रहा है। मंगलाचरण कार्यक्रम में आज है आर्य सभा मॉरिशस, प्रश्न और उत्तर का जो सिलसिला है ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी चलते हैं एक भजन की तरफ।

0: स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न है। वेद विद्या के बाद जब स्वामी जी स्वामी दयानंद कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने यज्ञ पद्धति के विषय में बहुत प्रचार प्रसार किया। उसमें एक यज्ञ है पितृयज्ञ, उसे हमें अवश्य करना चाहिए। स्वामी जी कृपया इस यज्ञ पर कुछ प्रकाश डालिए।
1: ओम। पांच महायज्ञों में से संक्षिप्त परिचय तौर पर ब्रह्म यज्ञ का इतना ही अर्थ है कि वेदों को पढ़ना और ईश्वर की अखंडित उपासना करना। देव यज्ञ में हम अग्निहोत्र का बहुत लंबा विस्तार है, जिसमें देव पूजा भी है, दान है, संगतिकरण है। ये सृष्टि में संतुलन करने का अमोघ अस्त्र है। शुद्ध यज्ञ के करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, बुद्धि निर्मल होती है, मौसम सुहावना होता है, सूर्य अच्छी प्रकार तपता है, ठीक वर्षा होती है, साइक्लोन नहीं आते हैं। पूरी सृष्टि में संतुलन करने का सबसे बढ़िया साधन, जिसको महर्षि कहते हैं देव यज्ञ, उत्तम साधनों से तीव्र अग्नि में श्रद्धापूर्वक हवन करना, ये बहुत बड़ा साधन है। इसके बाद तीसरा है पितृयज्ञ। अपने माता पिता गुरुजन जो वैज्ञानिक हैं, समाजसेवी हैं, कौन से जीवित लोग हैं, इनको भोजन अन्न वस्त्र सेवा चिकित्सा से उनको तृप्त करने का नाम पितृयज्ञ है। ये सदा जीतों का किया जाता, मरने के बाद नहीं होता है। जो माता पिता गुरुजन समाजसेवी लोग हैं, हमको ज्ञान विज्ञान देते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको यथा समय पूरा कर देना। बहुत लंबा विस्तार है, छोटा संक्षेप चर्चा करते हैं। जिन्होंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद विद्या को खूब पढ़ा और पढ़ाते हैं, उनका नाम है वसु संजक पितर, जो निवास करते हैं विद्या में। दूसरे हैं, उनका नाम है रुद्र संजक पितर, जिन्होंने 44 ईयर तक वेदों का वांग्मय का गहन अध्ययन करके विविध विज्ञान को खोजा। मौसम का विज्ञान, ऋतु का विज्ञान, समय का विज्ञान, कृषि विज्ञान।

0: ब्रह्म विज्ञान इन विद्याओं को खोजा और खोज करके पढ़ाते हैं। उन महान पितरों से विद्या पढ़ना और उनकी सेवा करना, उनसे प्रश्नोत्तर करना, उनसे ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करना। तीसरे पितर संजक कहलाते हैं, आदित्य संजक पितर, जिन्होंने 48 साल तक उम्र तक वेद विद्या का गहन अध्ययन करके खोज करते हुए और पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक पदार्थों के विज्ञान को जाना है, समझा है, ऋषि बन गए, ज्ञानी बन गए और समाज को वो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान की उन पर वर्षा करते हैं। ऐसे जो महान पितर संजक हैं, इनकी आज्ञाओं में रहना, ये भी पितर यज्ञ हैं। और जो माता पिता जन्म देते हैं, वो हमारे गुरु भी हैं और वो उनका भी नाम पितर है। उनकी भी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनको नित्य प्रति करना। अभी परंपरा चल पड़ी है, साल में एक बार 15 दिन के लिए पितृ यज्ञ करेंगे, 11 महीने छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नित्य कर्म है, हर दिन माता पिता बड़ों की सेवा करना। जो दूर देश रहते हैं, उनको फोन के माध्यम से पूछना, उनके पास जाना, जैसे भी हो, इनका नाम है नित्य करने वाले कर्तव्य हैं। ये एक दिन नहीं होता है, ये पूरे साल करने का है। और जब प्राचीन काल में माता पिता जंगल में चले जाते साधना करने के लिए, तो वहाँ से उनको पुत्र आदि जाके उनको उनके भोजन है, उनकी औषधि है, और उनको मिल के आते थे, उनसे उपदेश ग्रहण करते थे। और वर्षा काल में अपने घर बुला लेते थे, बहुत वर्षा होती है, चलो घर में रहो, हमको उपदेश देना, विद्या पढ़ाना, जीवन के अनुभव से हमको लाभ देना। तो ये कहलाता है पितृयज्ञ। बहुत व्यापक, केवल पिता ही नहीं आते हैं, माता भी है, पिता भी है, ग्रैंडफादर भी है, ये भी आ गए, और जितने समाज सेवी हैं, और जो लोग देश की सेवा करते हैं, कोई डिफेंस साइंस का विज्ञान वाला व्यक्ति है, कोई मेट्रोलॉजी को वैज्ञानिक, वो भी पितर कहलाते हैं। कोई एग्रीकल्चर को जानने वाला है, कोई कॉस्मोलॉजी को जानने वाले हैं, सारे पितर कहलाते हैं। क्योंकि पितर नाम है ज्ञानी, पितरह पालकह, जो ज्ञान विज्ञान देके पालना करते हैं। और किसी को मेडिकल साइंस की जानकारी, वो भी हमारे पितर कहलाते हैं। किसी को यज्ञ का विज्ञान है, किसी को संध्या का विज्ञान है। तो विविध प्रकार की जो विद्याएँ वेदों में हैं, असंख्य विद्याएं हैं, कहीं 64 विद्याएं हैं, कहीं 14 विद्याएं हैं, जितनी विद्याएं हैं, ये विद्यात्मा का भोजन है। जब व्यक्ति विद्या का ग्रहण करता है, तभी वो खाना पीना बार का सुधार सकता है। क्योंकि विद्या रूपी भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति दुर्व्यसनी नहीं हो सकता है, दुष्ट कर्म नहीं करेगा, हिंसा वाला भोजन नहीं करेगा, वही पितर कहलाते हैं। तो पितर यज्ञ की आवश्यकता है। जो माता पिता लोग जहाँ भी रहते हैं, उनके संतान उनके पास जा कर उनको मिलें, उनके सुख दुख में उनके दुख को कम करना, उनके सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करना, यही पुत्र का शिष्यों का कर्तव्य होता है। और नियम भी है, जो हम जैसा बीज बोते हैं, वैसे हमको फसल आती है। जिसने पितृ यज्ञ किया है, उसका पितृ यज्ञ बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि हम बस पितृयज्ञ नाम ले लें, नहीं, क्रिया करना। वैदिक धर्म में क्रिया की प्रधानता है। पहले जानकारी करो, नोइंग, उसके बाद एक्ट करना है, अच्छे से कर्म करना है, तीसरा अचीवमेंट अपने आप हो जाएगा। ज्ञान कर्म उपासना, पहला नोइंग जानना, फिर एक्ट करना, तीसरा गेट पा लेना। तो पितृयज्ञ की महत्ता इसी बात में है कि जितने लोग श्रोता लोग सुन रहे हैं, सभी लोग ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं और बड़ों के पास जाएं, उनके ज्ञान से लाभ उठावें और जीवन को ज्ञानमय बनाएं, ज्ञान का सेवन करें। ज्ञानामृतम भोजनम, जिसने ज्ञान का पान कर लिया और फिर ऋषि योगी बन जाते हैं, उनको खाने पीने की बहुत थोड़ी आवश्यकता होती है, थोड़े हम गुजारा करते हैं, थोड़ा खाते हैं और खूब ज्ञान विज्ञान की वर्षा करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो हमको क्या बनना चाहिए? ज्ञानी बन करके औरों को रास्ता दिखाना, और जिन रस्तम को दिखाया है उनका सादा सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनके उपकारों को मानना, बहुत बड़ा गुण है। जिसने हम पर उपकार किया है, किसने भी किया है, सदा उपकार को याद रखना। ओम।
1: स्वामी जी, इस ज्ञानवर्धक वार्तालाप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यज पर बहुत प्रकाश डाला। इसी आधार पर हम एक भजन भी सुनेंगे थोड़ी देर में। अब हम आज्ञा चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।
2: जी हाँ, बस थोड़ी देर में आप भजन सुन पाएंगे। कार्यक्रम मंगलाचरण, और आज वैदिक धर्म पर ये कार्यक्रम आधारित।

कार्य था। हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे आर्यसभा मॉरिशस से आए पंडिता सत्यम चमन जी को, साथ में भारत से आए स्वामी आशुतोष परिव्राजक जी को। चलिए, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा, ऐसे एक बार फिर से मिलेंगे। मंगलाचरण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अभी उदय से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मोरिसियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने की दिशा में गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है।

0: सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है, सुबह के 9:30 से दोपहर के 1:00 तक। आम जनता उन वस्तुओं की को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। ये इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित अपने पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही है। साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को मजबूत करना चाहते हैं। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी के दरवाजे पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चूना, स्टॉकफिश, दोगाद हमारी कई महासागरीय मछलियों को आज कुछ यूरोपीय मंडियों जिनमें इंग्लैंड भी शामिल है उनके द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई है और ये मॉरिशस को एक नए बाजारों की तलाश करने विशेष रूप से एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ले जा रहे F-35 फाइटर जेट के बेहद संवेदनशील पुर्जों वाली एक खेप को हांगकांग भेज दिया गया। इस घटना के बाद अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ये पुर्जे चीनी अधिकारियों के हाथ लग सकते हैं। खबरों के अनुसार इस शिपमेंट में F-35 का कनोपी शामिल था और ये एयरक्राफ्ट के स्टिल्थ सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। बारो लेन एंग्रे मार्शियल में 80 साल की श्रीमती हेरावंती रिसल, श्रीमती हेरावंती रिसल, पैदाइश नाम राम गुलाम और जिन्हें सब लोग दादी माईबू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे पंडित अनिरुद्ध मिश्रा रिसोल के घर बारो लेन एंग्रे मार्शियल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। एवेन्यू ओकिडे कैथोबोन में 91 साल की मिसिज फातमा बीबी महमूद सोरेफान, पैदाशी नाम नहाबू और जिन्हें सब लोग फातमा नहाबू सोरेफान के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के बारह बजे उन्हीं के मकान एवेन्यू ओकिडे कैथोबोन से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कैथोबोन की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सामिन कराम, कभी कभी किसी की वफ़ात की खबर महज एक खबर नहीं होती, वो एक खला होती है, एक ऐसी खामोशी जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पिछले इतवार को हम सबको ऐसी एक खबर मिली जिसने हर एक को खामोश कर दिया, ऐसी खबर जिसे सुनकर यकीन करना बड़ा मुश्किल था। हम बात कर रहे हैं हाफिज उकारी फकी अली नूरानी रहमतुल्लाही की, जिनके अचानक इंतकाल ने पूरे मॉरिशस को गमगीन कर दिया। एक महबूब आलिम दीन, एक खिदमतगुजार, एक खुशुल्हा कारी कुरान, एक मुअल्लिम, एक रहनुमा। बरसों पहले उन्होंने केनिया से मॉरिशस तक का सफ़र तय किया। जामा मस्जिद पोर्टलुई के साबिक इमाम रहे, लोगों के दिलों में जगह बनाई और आखिरकार केनिया ही की सरजमीन ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। उन्हें केनिया के मटिंडा मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। माह रमज़ानुल मुबारक की रातों में उनकी तिलावत सुनने वाले शायद आज भी उनकी आवाज़ को अपने कानों में महसूस करते होंगे। जब वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते थे तो महसूस होता जैसे अल्फाज ज़बान से नहीं दिल की गहराइयों से निकल कर महफिल के हर गोशे में उतर जाते। उनकी आवाज़ में एक सोज था, मिठास थी, एक अजीब तासीर थी। आइए सामईन कारी फकी अली नूरानी रहमतुल्लाही की खुशगुलू आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ समात करते हैं।

सामईन कराम, अल्लाह तबारक वताला कारी फली फ़की अली नूरानी रहमतुल्लाह के अहले खाना अज़ीज़ों और शागिर्दों को सब्र जमील अता फ़रमाए, मरहूम की दीनी खिदमात को उनके लिए सदक़ाए जारिया बनाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र को गुलज़ारे जन्नत बनाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हर एक वली किसी ना किसी के कदम पर होता है और मैं अपने नाना जान यानी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हूँ। सामईन, ये फरमान पीरान पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का है। ये ऐलान किसी गुरूर या तकब्बुर से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास इनाम और विलायत के कमाल की दलील है। बिलयकीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे, मकबूल तरीन वली बल्कि तमाम वलियों के सरदार हैं। इल्म में यगाना, तसव्वुफ़ में बेमिसाल, ज़ुहूद व तक़वा में बेनज़ीर और विलायत में लाजवाब। दरअसल गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका ईमान को जगाने वाला चराग हैं। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद अली अनस दुलिप को 18वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बू फिरोज़, अम्मी नसरीन और बहनें नबीहा और नाशरा की तरफ से ढेर सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। अल्लाह तबारक व ताला अनस को हमेशा खुश रखे, उनकी तमाम नेक दुआएं कबूल हों। तो आइए ये अगला कलाम उनके नाम।

शख्सियत मुक्तदाए जुमलाए मशायख हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाही का सजरा नस्ब अपने वालिद मोहतरम की तरफ से 11वीं पुश्त हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन और वालदा मोहतरमा की तरफ से 14वीं पुश्त हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन से जा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस ख़ानदान आलिशान को नस्बत व कराबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हो उस मुकद्दस घराने की मसील व नज़ीर किस तरह मुमकिन हो सकती है। इसलिए सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। सामईन आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। नानी ताहिरा खुदादिन को तरासवीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, 83 ईयर्स ओल्ड। सामईन ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला उनकी सेहत उनको सेहतयाब रखे, उनको सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और खुशकिस्मती की बात यह है कि उनके लिए दुआ की फरमाइश हमें 3 लोगों से मौसूल हुई है, यानी 3 लोगों का अलग मैसेज हमें मौसूल हुआ है जिन्होंने उनके लिए उन्होंने दुआ की फरमाइश की है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जब बुज़ुर्गों का साया सर पर होता है तो एक ख़ास बरकत होती है। अल्लाह ताला हमारे तमाम बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमाए और उन्हें हमेशा खुश रखे और हमें ये तौफीक दे कि हम उनकी उनकी खिदमत करें। दूसरा पैगाम आइए समाप्त करते हैं। जनाब मुजम्मिल अपने मरहूम वालिद अलहाज इमाम जमशेद इस्मदार के लिए इस साल सवाब की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने एक कलाम की फरमाइश भी की है। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद मोहतरम की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो ये अगला कलाम तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम।

अलीमिया मस्जिद बोबुआ में, अहमद कबीर मदरसा पोटलू में, फैज़ान सहाबियात आयदोगे पोटलू में, अहले बैत मदरसा स्टेनले रोसिल में, नूरानी सेंटर लागिकुवों पोटलू में, आफ्ताब इस्लाम मस्जिद सैंपिये में, फैज़ रज़ा मस्जिद न्यूगोव में, कौमापू ओंगियता में और जमीला मदरसा कौनमास पावे में। जुमेरा 24 सितंबर को सुबह के 10:30 बजे मस्जिद तैबा पोंपलेमुस में तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। सामईन, इन तमाम ऐलानात के बाद आइए 11वीं शरीफ के मुबारक मौके पर कसीदा गौसिया समाप्त करते हैं।

मोहतरम सामीन, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाली एक बुलंद पाया मुकर्रर थे। आप रहमतुल्लाली ने वायज़ और नसीहत के ज़रिए दीन इस्लाम की बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आपके बयान का अंदाज़ इतना प्यारा था कि लोग जोक दर जोक आपकी तरफ मुतवज्जो होते, आपके बयानात खामोशी से सुनते, क्योंकि वो इतने पुर तासीर होते थे। दरअसल आप रहमतुल्लाली ने जब बयान की महफिलें शुरू की तो शिरकत करने वालों की कसरत की वजह से मदरसे की जगह कम पड़ जाती। लोगों ने आसपास की इमारतें खरीद कर वक्फ कर दी। बगदाद के अलावा दूर दराज से लोग आपके वॉइस सुनने के लिए आने लगे। मनकूल हैं कि बिलउमूम 70,000 लोग आप रहमतुल्लाली के इज्तिमा में शरीक होते। इतना ही नहीं, गौसे आज़म रहमतुल्लाली की मजलिस में लोग कलम व दवात लेकर तशरीफ लाते ताकि आपके इरशादात को लिख कर महफूज कर सकें। सामीन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। रिविया जुगोंपा से शाहान अपने नाना जान साउद के लिए, जनाब साउद के लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनको एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और उन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। क्यूपिप से मोहतरमा फौजा अपने मरहूम शोहर रिशाद तुगाबाली के लिए दुआएं इसाले सवाब की दुआ तलब करती हैं। उनके बच्चे मुस्लिमा, यासीन, मुजफ्फर, मरियम, जिन्नारा, इमारा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरहूमीन को अपनी बेपाया रहमत के साए में जगाता फरमाए, उनकी लग्जिशों को दूर फरमाए, दरगुजर करे और उनकी कब्रों को नूर, सकीनत और दायमी रहमत का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

सामईन कराम, अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ करने के बाद सुल्तानुल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस माह मुबारक की 11 तारीख को बाद नमाज मगरिब बगदाद शरीफ में विसाल फरमाया। विसाल के वक्त हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ 90 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा आपके साहबजादे हजरत सैदना सैयद सैफुल्ला अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। लातादाद लोगों ने जनाजे में शिरकत की। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरनवार बगदाद शरीफ में वाक़ है, जहां दिन रात जियारत करने वालों का हजूम रहता है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का।

听众朋友，这是毛利求是广播电台886频道，今天又到了华语歌曲欣赏节目时间，下面请大家一起来欣赏几首优美的歌曲。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: हम और आप, हम और आप।

0: नमस्कार आदाब और गुड आफ्टरनून श्रोतागण, घर ही मिलाते चलिए। इस समय ये शाम के 4:10 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। और आज हर रविवार की तरह मैं एक और विषय लेकर आई हूँ और आज कुछ खाने पर हम बात करते हैं। दादी नानी की रसोई सिर्फ खाने की नहीं, यादों की भी होती है। जी हाँ, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, कभी कभी एक निवाला पूरा बचपन वापस ले आता है। कभी माँ के हाथ की दाल की खुशबू, कभी नानी की हाथ की पुरानी सी रेसिपी, कभी घर के आंगन में बांटा हुआ कोई पकवान, और कभी वो एक सिंपल सा खाना जो आज दुनिया के किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उस खाने में सिर्फ मसाले नहीं होते थे, उसमें अपनापन होता था। आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि आज हमारे पास रेसिपी के लिए YouTube है, Google है, Instagram है, लेकिन हमारी दादी नानी को रेसिपी याद रखने के लिए किसी फोन की जरूरत नहीं पड़ती थी। थोड़ा सा नमक, एक मुट्ठी दाल, जरा सा मसाला और बस हाथ का अंदाजा, दिल का प्यार और घर की रसोई से निकलती हुई वो खुशबू आज भी याद है ना? तो आज भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं। वो यादें जो खानों से आप लोगों से जुड़ा है, जुड़ी हुई है। दादी नानी की रसोई सिर्फ खाने की नहीं, यादों की भी होती है। आइए, आप 4028085 पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और अपना विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लाइन पर कौन है और उनके पास कहने के लिए क्या है। हेलो,
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप?
1: आप तो बस हमको हमारे बचपन में वापस ला गए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि दादी, जब दादी की बात कर रही है, नानी की बात कर रही है, मैं तो अपने माताजी के याद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो इस साल 1 फरवरी को 103 हो जाती, 100 years old मेरी माताजी। तो अब खाने की बात कर रही है तो कभी कभी जब घर में पत्नी कुछ बनाती है तो बोलती है, ए तो अपेल तो मम्मा, तो मम्मा सो कागी जब पे कुछ बात, तो मम्मा सो कागी। अब मैं बांटता हूँ आज उदाहरण के रूप में जो मेरे माताजी की स्पेशलिटी थे। कभी कभी हम जब बीमार हो जाते थे बचपन में, तो तरकारी या भात ये सब हम नहीं खा पाते, तो वो वेमिसेल और दूध में वेमिसेल दूध में पकाती थी, तो बहुत फैसिलिटी से ये बोलते हैं आवाले हो जाती है, और वो थोड़ा सा शक्कर डालते थे, तो ये एक स्पेशलिटी है। और दूसरा स्पेशलिटी हमको याद है साले में जब पम देते हैं कागज लहसुन बनाती थी, हम उस वक्त हम कहते थे बुयों पम देते हैं कागज, ये भी जब हम बीमार हो जाते थे ये लहसुन हमको मिलते थे खाने के लिए बचपन में। और दो रिश्त बोलता हूँ, हमारे घर के सामने एक खुशीचे के पेड़ था बहुत बड़ा, तो हमको फैसिलिटी मिलता था हमेशा कुचा बनाने के लिए, और मेरे माताजी हमेशा एक घोपो में एक साल तक हम रख सकते हैं, वो बनाती थी कुचा, फुसीचे के कुचा।

0: सुरन के बेटा हमारे पौधा था आंगन में, तो जब वो पागल हो जाते थे तो सुरन के अचार बनाती थी। ये भी आजकल थोड़ा रेयर है, जहाँ हमको मिल जाता है तो हम करता हूँ सुरन के आसो। और टमाटर की चटनी बनाती थी जो, तो वो पोहे में पकाती थी, तो लाबरेज जो था लाबरेज उस पर वो पंदा टमाटर को डालकर उसको कैसे
1: उसकी चटनी बनती थी।
0: बोलते हैं, उसके चटनी बनाते थे। वो एकदम अलग के स्वाद था पूजा जी। आज तक हम करते हैं, कढ़ाई में भूनते हैं, लेकिन वो पा गई नहीं है, स्वाद थोड़ा डिफरेंट है।
1: बहुत
0: तो
1: बहुत धन्यवाद
0: ये
1: हरीश
0: था
1: जी।
0: मेरे अनुभव। थैंक यू वेरी मच।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। दादी नानी की रेसिपी सिर्फ रेसिपी ही नहीं, यादें भी जुड़ी हुई थी। हेलो,
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते बहना। मैं
1: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, आप कैसे
1: मैं
2: हैं?
1: भी ठीक हूँ। और आपका क्या कहना है इस विषय पर?
2: तुम तो हमारी याद फिर से ला देती है दादी
1: चलिए,
2: नानी की याद
1: अच्छा बताइए।
2: जब बात करते हैं तो वो सामने में आ जाती है वो कैसे कहते हैं, ग्वारदेसिन के अचार जानते हो?
1: हाँ, गुलाबजी सिंह के अचार? अच्छा,
2: हाँ,
1: नहीं।
2: मेरे नानी क्यूपिक की थी, तो जब आते थे हमारे यहाँ तो वो गुयाबदेसिन को उनके बिया निकाल कर उनको नमक में डालकर सुखा कर लाते थे। यहाँ पर हमारी माँ के पास जब आते हैं तो वो अचार डालते थे वो बर्तन में ना, एक बर्तन में, तो जब वो अचार वो पो में डाल देते थे ना, तो वो बर्तन में मैं भात डाल के सान के खा लेती थी बहुत अच्छा लगती थी। और वो सिल्क में पिसल वो सरसों की महक, वो लहसुन, वो मिर्च डाल के वो डाल देती है। और एक एक पो में वो आते हैं लाजली जाम, वो लाती थी। और मेरे पिता के नानी जब थे वो मुरूंग के भाजी भूंजते थे और वो रोटी पकाते थे, एक डिक्ची रोटी आज पकाते थे इस वक्त, तो रात सांझ के खाती थी और लौंदे में वो बासी हो जाते हैं ना, तो हम
1: और
2: जो
1: भी अच्छा
2: खबर
1: हो
2: तो
1: जाता है खाने
2: और
1: में।
2: अच्छा था, मोटा मोटा रोटी आधा खा लेते एक एक एक टुकड़ा, तो दिन भर हम धौक खेल रहते थे वो मुरूंग के भाजे। और वो कैसे भाई हरीश ने खा वो पोमनामू टमाटर आग में भूंज कर चटनी बना देती है, जब चटनी बना देते हैं तो हम उनके पास बैठते थे ना, तो वो उनके हाथ में जते कहते हैं अपने जीभ डालिए
1: जी।
2: बहुत अच्छे थे वो खाते थे। तब उस वक्त वो डायबिटीज, टेंशन के मारादी, कैंसर कुछ नहीं थी
1: कुछ नहीं था
2: है,
1: जी।
2: इतना ज्यादा नहीं। और वो लोग कॉफी पीते हैं, करते थे कॉफी, ब्लैक कॉफी, कुटल कॉफी, और जिते पिया कैसे कहते हैं, जिते पिया पीते पियाते थे, लेकिन हम लोग तो नहीं पीते थे ना, हम लोग तो गाय के दूध पीते थे ना।
1: जी जी
2: और मेरे नानी आते हैं, मेरे मामू मामी, मेरे मामी यहाँ जब गाय में बच्चा देते थे गाय, तो वो फेनूस और वो दूध फाटल दूध लाते थे, तो हम बहुत खुशी खुशी खाते बहुत अच्छा लगती है। आले पूजा,
1: बहुत
2: यही पूजा
1: बहुत
2: कहना है।
1: धन्यवाद, बहुत
2: हाँ,
1: बहुत
2: उसने
1: धन्यवाद
2: के
1: शोभा।
2: के करिए पूजा जी, जब अचार देते हो ना बर्तन में ना,
1: हाँ
2: तो तुम भी अपने भात मिला के खा ली खा लिए
1: जी, मैं यही करती हूँ। धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। और आज हम बात कर रहे हैं दादी नानी की रसोई केवल खाने की नहीं बल्कि यादों से भी जुड़ी हुई है। अंगिरा दादाजी नमस्ते।
0: नमस्ते बेटी, समाचार?
1: समाचार ठीक, तो कैसा हुआ? अच्छा हुआ।
0: चलिए अच्छा है, अभी का करी तो जीवन ही ऐसे चल जात बा।
1: बोला।
0: जाने लेना बहुत दूर भेज देला हमरा भी बाप दादा दादी कहानी जाने ले, जोन पकावन मिलत रहल और जोन

0: के देवत रंज अभी नहीं मिली,
1: नहीं मिली। हाँ,
0: एगो बैठ करके द्वार पर चार जना पांच जना में काफे कुटात रहल, ओखड़ी अपना बड़ा पिस्ते पिस्ते छोटा हो जाई, हमनी के सिल उतना लोड़ा छोटा हो गए, सब पिसत पिसत हमने खा गए नीचा ना। तो वो खाना जो बनत रहा अभी नहीं मिली ला बेटी,
1: नहीं मिली। हाँ,
0: और जैसे कि जब टकारी नहीं रही तो हम मार के जो बनावल जात रहल उहु पी कर के बड़ा निमन से
1: जीवन जात रहल,
0: निमन जात। हाँ, बड़ा खुशी से पी ही सर कि दादी बनावत होन है पिए के सब चीज बांट बांट के खाए सर, और चार पांच परुषा मिल के बैठ के जब थोड़ा सतवा पीस दिहन जा तो वो तो और बहुत रहे,
1: और बहुत हो जाए।
0: हाँ, जब खुशी खेब ना, वो सब खाना अभी नहीं मिलेगा बेटी,
1: नहीं
0: अभी तो तनी निंदा नहीं, अभी तो सब बदल गया बा, सब बदल गया बा, कभी कभी याद आ जाला वो सब खाना की। पहले के लाबरेज जोन रहल, लाबरेज में जोन को लिट्टी पकी तो वो दूसर रहल,
1: दूसर रहल।
0: अच्छा, यही बोले के बा, बस नमस्ते बेटी।
1: नमस्ते नमस्ते, आप प्रणाम दादाजी, और आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा के बेटी के प्रोग्राम में कैसे नहीं बुलवाए।
1: धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार राधा जी, कैसी हैं?

0: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार राधा जी, कैसी हैं?
0: हाँ, उसको पतरदेली बोलते थे पहले, तो हमेशा से माँ से कि लाओ मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए। और माँ जो थी, जैसे अभी अंगिरा खसा ने कहा और हरीश भाई ने, वो जो अंगोरे पर जो वो कैसे कहते हैं ला भूनती थे, वो टमाटर हाथ से बनाकर खिल बनाती थी। अगर आज वही टमाटर हम गैस में बनाए खाएंगे तो वो स्वाद बराबर नहीं रहेगा। वो सौंधी सौंधी महक, वो सौंधी सौंधी जो वो बनती थी, उसकी महक ही अलग थी और कुछ अलग था। और वो सबसे बड़ी बात ये थी पूजा जी, कि माँ जब वो चटनी बना देती थी ना, तो वो सब बच्चों को एक एक कौर सबको खिला देती थी, भात में अच्छी तरह से सान कर सब बच्चों को एक एक जो स्नेह जो ममता माँ के हाथ की होती थी, और उस
1: कहीं और
0: टमाटर की
1: नहीं,
0: चटनी की, वो कहीं नहीं। आज हम लाख गैस पर बनाकर खाएं, वो ऐसा नहीं बनेगा।
1: नहीं बनेगा
0: और
1: सच में।
0: खिचड़ी दाल पीठा ये सब खाते थे। और उस समय के बच्चों में वो नखरे भी नहीं थे कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जो भी बनता था वो सब खाते थे, सब खाते थे। जैसे मार छौंका, मार का झोला भी वो चाचा ने कहा, वो भी कभी कोई बच्चा नहीं कहेगा कि नहीं मैं आज मैं नहीं खाऊंगा, कभी किसी घर में ये शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि
1: हाँ।
0: सब लोगों की इसकी आदत पड़ गई थी। माँ के हाथ का बनाना, दादी नानी और कोई बीमारी कोई रोग भी नहीं था पूजा जी उस समय में।
1: जी
0: बहुत साधारण से खाने थे, बहुत साधारण से भोजन थे, लेकिन सबका स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता था। और जो बुजुर्ग हैं आज हमारे हमारे किसी अंगिरा दादा और भी बुजुर्ग हैं, कि ऐसा मानिए कि उस समय का खाना ही आज तक उन लोगों को यहाँ तक लाया है, उस समय का भोजन, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व था ना। अभी अभी की तो है, लेकिन दवाई पता नहीं कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो उस जमाने में, और फिर माँ की ममता, जो दादी नानी स्नेह जो भी बनाती थी, छोटा सा ही तरकारी आ गया, तो जो प्रेम था उसमें वो अलग ही था, और उसका एहसास हमको आज तक भी होता है। हम मैं आज भी खिचड़ी बनाकर खाती हूँ, दाल पीठा, ये सब पुराने खाने मुझे बहुत पसंद है, वो मार कर ये सब मैं बनाकर आज भी खाती हूँ। शायद आज के कुछ बच्चों को इस बात का ज्ञान होगा, या वो लोग जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं हमने खाया है और हमको बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमें हमारी दादी नानी माँ की यादें ताजा रहती है। तो यही मेरा कहना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है आपने,
1: बहुत
0: सबके अच्छे
1: बहुत
0: अच्छे विचार हैं, हम सुनेंगे सबको। ठीक
1: जी,
0: है,
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद आपको
1: धन्यवाद आपको भी
0: जी।
1: एक

0: हाँ पोगा मन बहुत बढ़िया पोगा मन हम तो दिखते नहीं रह सक पुराना पकवान देखी ले काली देख ली सर के रसमलाई बनाई के आज तो अन्य पोगा माता बहुत अच्छा बनी की
1: देखा
0: बहुत
1: था वाना दूध से कैसे बनाई ले बाते हाई बिना
0: हाँ
1: अंडा
0: हाँ
1: डाल के डाल ऐसे रसमलाई का
0: हाँ हाँ
1: बना देलक
0: हाँ
1: बड़ी बढ़िया। हाँ
0: साल सब सब परिवार से देखा थी सब बहुत सब फेस फैशन वैशन जो जोली प्रोग्राम निकल आवे ला
1: हाँ
0: आ
1: धन्यवाद।
0: राजो जो निकल आलो था बहुत बा बहुत बढ़िया बा जितना जना सुनत हमने क्या जितना जना अभी बतियाई सब के बोलते प्रणाम नमस्ते जितना जना प्रोग्राम में भाग लेला कर भाग लेवे भी मैं हमरा ऐसे बोलत हूँ बहुत याद चलाल अभी कहाँ पर जियत निसार हो लिपुक रहल दादी रहल नानी लागे जेबा हमार माँ रहल हम पहला बोध है कैसे अभी आलू बा आलू पकाईला सब तो अभी तो आलू तो देखा तो सब चिप मिला सब बना के पहला छिले के पकाई के अगाड़ी हम मार रहल जो हमारे दादी लोग रहल वो अलुआ के लापू सैती पकाई सर ओकर लापू सैती यार कैसे बा ये जन ऐसुसु बाटे अभी तो सब छील छाल के सब पकेला जल्दी सफा करके ओकर लापू सैती ओका लापो सहित ही पकाओ तन से आरो जब मसाला पीसन से ता जान हम लगे तकारी पकी तो हम जाना जाई तकारी पकत तटे अब भी कहां जान से ही सिलो रहा तो ढेर कोई लगे नहीं होई अभी तो सब ग्राइंडर में बैठे अब मसाला पीसन से ओकरी मुठ रहल हाउ में मसाला कुटा तलन से ये शादी में कुटा तल रहल हम लगे हाउ से मसाला पीस के एगो तकारी पका दिए सब मसाला के तो बोल भाई तकारी पकल बटे आर एगो बात आ रहल है मरछोका हाई मारछोका सब की देवा मरुए डाल के बना दे बता गाड़ी तो मारछोका बनाओ तो से बोमड़ी डाल के हमार माँ देल हमरा याद बाटे करत हला अभी लड़का लोग कैसे जानी है सब
1: नहीं
0: आर
1: जाने।
0: अभी तो अब सासे में बेचा दल पीठा बोला तो दल पीठा मन के रखा गया सासे में अगाड़ी हमार माँ पकाई है जो आटा बेल के तो पकाई दल पीठा खेब तो बोलवा हे सच्चे के पुराना पकवान पकत अटे बे अभी तो देखे तो कैसे बाटे जहाँ बोलवा मधमक बोला मसाला पीस तो बोली कौन से मसाला काजे नहीं बाटे तो सब ग्राइंडर में डाल के हो जाला टे मैं वहां पे आगे के हमनी के दादी रहल नानी रहल हम हमार माँ रहल वो सब पकावत न से कोनो पकवान पकयन से गो मसाला में जब पीस के पकयन से तो बोलबा सच्चे के एगो तगारी पाँच पकल बा खात हुआ अभी तो नहीं बुझाला टे कौन चीज खाता कौन चीज नहीं मैं हम बतियार गए काचन दो थे बतिया के बहुत जोड़ी प्रोग्राम रख लगा बहुत धन्यवाद जितना सुनता अंत में बोलते हम तीन को संगतिया लोग के नाम बोले होते हैं भाई नामी लक्ष्मण के बोलते प्रणाम और आशा जानू के बोलते प्रणाम आरती बात चित्रा माँ दलबे से नमस्ते आर जितना संगतिया बात सब संगतिया मन सर सबके प्रणाम बोलते हैं और आपके बोलते हैं प्रोग्राम नहीं कहे हमने के जीवन में बहुत खुशी भी हमने के मिले लगी धन्यवाद पूजा जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तोहरो। और गौर श्रोता बातें लाइन पर आओ सुना। हेलो
2: रूप आखे तपास आलू।
1: हेलो नमस्ते नमस्ते कमला जी। अच्छा हुआ
2: हाँ हमारी अन्नपूर्ण देवी की जय हो। हाँ
1: आपका
2: इतना जल्दी
1: स्वागत है
2: प्रोग्राम।
1: कमला जी।
2: हाँ पुराना पकवान में इतना जल्दी जल्दी प्रोग्राम आना था। और जुमा के दिन भी इतना जल्दी जल्दी प्रोग्राम करा था। चलिए थोड़ा ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देवत है तो प्रोग्राम के।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: हाँ और बात करा था पुराने जमाने के पकवान के ना।
1: और
2: हाँ
1: एक
2: तो
1: एकर
2: पहले
1: में कौन याद बातें तोहर जिन
2: एकर में हमारे बहुत सारे याद जुड़ल बा। अभी जो याद बात तोहरा बोला था एक दुगो बात।
1: यानी बोला
2: हाँ बोले ला ना कि पुराने जमाने के पकवान के बोल जा ट्रेडिशनल लॉस्ट रिसीप पेजी हो गल बा सब आंशियन मौजे आंशियन लिपोक के मौजे। हाँ बोले ला ना एगो खूबसूरत धरोहर है औसे हमने के जोन पकवान रहा हमने के जोन दादी नानी मामा पापा दादा दादी सब कोई बनावे बैस के खावे खाए। हाँ तो बोले ला बदलते वक्त के साथ आज हमारे खान पान में फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है ना। हाँ जिसके कारण हमारी दादी नानी पर दादा के जमाने के कई बेहतरीन पकवान धीरे धीरे हमारी रसोइयों से गायब हो रही है। चूल्हे के ओकर पकवान में हमके याद बा हई करा तली सर कोमडामू के जला के मामा चटनी बनाई। अभी हाल ही में जब मामा के गुजरे के आगे हम लगे आज तो चूल्हा नहीं रहा हमके बोले चूल्हा बनाओ कोमडामू जलाई के चटनी बनाई के कि एगो परसों साले उमे जला के पता नहीं कैसे कैसे उस चटनी बनावत था अपन। आलू आलू
1: हाँ तोरा सुना था बोला।
2: हाँ बोले है परसों साले के जला के चटनी बनाई और तरह तरह के ऐसे पकवान बा। जब हम शादी करके आई तो तुजा जी हम कभी नहीं जनले रही दाल चुपवा के चटनी पीस के चटनी।

0: बनावल जाला,
1: दाल चिप्पा।
0: दाल
1: हाँ, ओकर
0: चिप्पा।
1: चटनियों
0: हाँ
1: बनेला। हाँ
0: हाँ तब हम आई तो अब हमारे यहाँ क्वाचे हमेशा बनते रहला हो, चटनी पराठा में चलेला जस्ती।
1: हाँ
0: हाँ और है अथी विवाह लिट्टी, आगे
1: लिट्टी।
0: जब मामा रोटी, हाँ मामा रोटी पकाए
1: हाँ
0: तब फिलहाल हम के रखी 2-3 गोलोया, हम कुछ चली सा लिट्टी, ओकर में ओकर लाल पोमदामू ज्वाइयों कुकर कोतोमिरी डाल के एक तनी सा नमक आवाजे करके तब तवा में सेक के तब फिर से ओके चूल्हा में घुमा घुमा के ओके पका के तब हम चाह से खाप सब। हाँ ऐसे तो एक बार तो बनान के लापो भी बा ओकर जिसपिलुआ घींच के खाली हो भीतर के एगो आगे को तान लेखन। तो एक दिन हम पकैली ना तो हमारे बेटा के देली खाई के, तो हमारे बेटा बेटा अभी माँ कौन सी पकैली हवे, तो हम बोली आगे को तान मसाला में, तो नहीं मानता खाओ ले लग, तब हम बोली नो ता जाके को तान सर सा बनान बनान मुन सा मुन चल जिपिला मुन कुपे मुन कुई। तब बोले जे कि एक दिन है अथी कर ली फिर आप के चटनी, तो उबरी पोम है पोम देतिया की चटनी खा के खुश रहे। तब एक दिन हम फिर आप के चटनी बनाई ली, तब बोला था अभी माँ कितन कुई लॉन्च कर ले रही, तब हम बोली बे मुन फिर पोम सचिनी पोम देते हैं अब एक लॉन्ची अब खाता, तो बोला था नो माँ नो पास सचिनी पोम दे पोम देते हैं हाँ तुन पी अंदर जा पे, तो हम बोली अथी हा फिर आप के चटनी हा। ऐसे करते करते हम लड़का लोग के आदत डाल दे रहे खाई के खुश रहना सा खाई के। और ऐसे तो ढेर अभी हमी के बुजुर्ग बा अभी अपन अपन बारे में बोलियन जा वो लोग के जमाने के पकवान। हाँ और विजय बंदन जी को हमारे प्यार भरा नमस्कार और उस चतारा चुमन के और सब सब अति लोग के श्रोता लोग के सब जन जन पौल युवा प्रोग्राम में आ सबके शुभ संध्या
1: शुभ
0: बोल दिया।
1: संध्या
0: विजय
1: आपको।
0: बंधन के, विजय बंधन के बोल जा पौ फे वहां यहाँ मोहताबा में आवा था तरकारी मसाला की पिसल
1: धन्यवाद
0: तिरुपति के। धन्यवाद धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: शुभकाम
1: धन्यवाद। शुभ शाम आपको
0: शुभकाम
1: भी, शुभ संध्या आपको भी। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। शमा जी नमस्ते, प्रणाम।
2: प्रणाम। आप कैसी है? चल
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: रहा है, धीरे धीरे गाड़ी खींच रही हूँ।
1: चलिए
2: हाँ
1: बोलिए।
2: तो आपने कैसे कहते हैं ना, हमारे बचपन की याद दिलाने के लिए कोटि कोटि बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी कि आप हमेशा भाग लेती रहती हैं।
2: और प्यार भरा नमन।
1: आपको भी।
2: हाँ तो मैं ये कहूँगी पूजा, दादी नानी का पकाया हुआ चटकार लज्जतदार मसाला मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन अब कहाँ मिलने वाला है।
1: नहीं मिलने
2: सिल बट्टे पर रगड़ रगड़ कर पीसते थे वो मसाले, और
1: वाला।
2: अंगीठे में अंगोरे डालकर भुना हुआ बैगन या टमाटर की चटनी। आपको पता है, दूध बॉईल करने के लिए, उबालने के लिए अंगीठे में वो दूध उपले डालते थे, उपलों से। आपको पता है उपले किसे कहते हैं ना, गाय के सूखे हुए गोबर। उसको जलाकर जब उसका सौंधेपन, जब उसकी खुशबू उठती थी, बहुत अच्छा लगता था।
1: जी।
2: हाँ तो अब कैसे हम भूल सकते हैं इन बातों को, उस जमाने के बच्चे हैं हम नहीं भूल सकते हैं। आजकल के बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं है ना। हाँ आटे में, आटे से भुना हुआ मोहन भोग, आपको पता है ना,
1: नहीं।
2: आटे से, आटे को भून कर मोहन भोग जैसे कहते हैं प्रसाद, उस समय प्रसाद नहीं बोलते थे, उस समय कहते थे मोहन भोग। खास कर घी से छोंका हुआ खिचड़ी और टमाटर की चटनी, या चिचिंदा पीपा गाय के छिलके की चटनी है, और पुदीने इमली और नारियल की चटनी। यही नहीं, मूंगफली को भी चटनी बनाते थे पीस कर, कमर डोला डोला कर सिल पर सब पीसते थे, तब नहीं थकते थे, कोई नहीं थकता था। आपको पता है ना, हम भी नहीं थकते थे, ये तो हमारा काम था। नानी कहती थी जाओ पीस कर लाओ, तो हम पीस कर लाते थे, देते थे। अब तो मशीन का जमाना है ना। हाँ अब मशीन का बटन दबाओ और झट से सब कुछ तैयार हो गया। खाने पीने का तो जमाना चला गया, इस प्रकार के खाने सभी बच्चे को चटाई में बिठा कर खाना परोसते थे, और हम उंगली चार चार खाते थे ना। उस समय में मानो माँ, दादी नानी क्या करती थी, अपना सारा प्यार आपके खाने में उड़ेल देती थी ना। तो अब केवल सुगंध आने से ही तो हमारे मुंह में पानी भर आता था। इसीलिए तो एक सेगा निकला था ना।

0: bread morong, batong morong, manger mal les reins. आपको तो पता है इस दो चीजों को हम कैसे भूल सकते हैं. हमारी जीवन जो हमारा जीवन हमारे जीवन की शुरुआत तो भेदमोंग बातोंग से हुआ है, दाल बुयों से हुआ है ना. हाँ, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं. और किसी ने अगर आपको याद दिलाया तो अच्छा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर फोन लगाए तो कुछ नहीं सुन पा रही हूँ. पूजा मुझे क्षमा करना, पता नहीं कैसे लगा आपको मेरा विचार.
1: बहुत अच्छा लगा, और आपने मुझे तो पुरानिया पकवान के लिए और भी रेसिपीज दे दी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नहीं, आप कितनी कैसे कहते हैं, मैं बुला सकती हूँ आपको, नहीं कहती हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे उतना कैसे अब बराबर दम नहीं है. बराबर कैसे कहते हैं, वो हौसला बराबर बराबर रोज नहीं रहता है ना. यूं तो पकाने की बहुत चीजें जानती हूँ, पुराने पकवान तो पका सकती हूँ, मिठाई भी बनाती हूँ, बहुत चीज जानती हूँ, लेकिन किसी को बुलाना अपने घर में, उसकी सेवा सत्कार करना मेरे लिए थोड़ा दुर्लभ हो गया है. जब जी रहे अच्छा रहेगा तो मैं कभी ना कभी आपको बुलाऊंगी,
1: अवश्य अवश्य,
0: चाहे वो दाल पूड़ी हो, चाहे वो दाल पीठा हो, चाहे वो दूध पीछी हो. ये सब तो हमारे बचपन की यादें हैं, ये सब तो हम अच्छी तरह से बना लेते हैं. जो भी कोई मेरे यहाँ मेरी सखी सहेली आती है तो सचमुच मैं दाल पूड़ी बनाकर खिला देती हूँ, साग सब्जी ही से सत्कार करती हूँ. आप बड़ाई तो नहीं कर रही हूँ, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मुझे आती है मैं बनाकर खिला देती हूँ. आप भी आएंगी तो आपको इसी प्रकार सेवा सत्कार करूंगी, ताकि एक यादगार बन जाएगी.
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी,
0: बहुत धन्यवाद आपको बराबर.
1: चलिए नमस्ते, एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको भी हम सुनते हैं. हेलो
2: हेलो, नमस्ते.
1: नमस्ते पिसे सर जी, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है, ईश्वर की कृपा. हाँ, मैं कहूँगा खाना पर पुरानिया खाना आज नया खाना बन गया है. जैसे कि पहले हम लिट्टी पकाते थे माता जी,
1: जी
2: प्याज पीमा इधर उधर डालकर, आज वह पिज्जा बन गया है. दूसरी बात है, माता जी जब रोटी बच जाती थी पाहता तो पतला पतला काट के पमदामू डालकर उसको छौंक कर हमको देते थे, तो वो बन गया है मीन. अब देखते हैं घुयाज, पहले तो हम घुयाज माता जी घुयाज करती थी. मिले काट के बाद बोल रहा हूँ, बैगन की घुयाद, पमदामू की घुयाद, तो आज वो घुयाद बदल गया है. आज मांस मछली की घुयाद होता है. अब देखते हैं खिचड़ी, पहले खिचड़ी सब कुछ डालते थे उसमें, आज वो बन गया है बिरयानी. तो ऐसे ऐसे वही जो पुरानिया एक खाना था पकवान, वही आज नया बन गया है. मुझे याद है मैं काकरियम में था, तो एक मित्र बोला आज हम घर नहीं जाएंगे खाने, तो चलो हम दुकान में, वो रसा मिलता था. मैंने कहा ठीक है, अब तो पैसा नहीं ना है, जिस्सू था रुपया रसा. तो मैं घर गया तो दादी भात निकाल कर रख दी थी, तो कहा कि भात खाओ. मैंने कहा नहीं, आज मैं रसा रोटी खाऊंगा. वो बढ़िया था. तो मैंने पैसे मांग कर मैंने सोचा कि देखता हूँ क्या पका है. फिर जब देखा तो कुबेर था, उसमें बैगन बैगन है और पमदामू की चटनी भूंज कर. मैं रह नहीं सका, मुझे चार पांच कवर जल्दी जल्दी खा लिया. इतना इतना उसका सुगंध, इतना वो क्या था वो. तो अब हम गए वहां पर जीपे रसा खाने, लेकिन वो खाना दादी जो वो चूल्हा के यहाँ बैठ कर वो पकाती, खूब तेल खूब जेपी बढ़िया से, वो तो खाना ही चाहिए था. वो जमाना आज भी याद आता है. लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें पुरानिया पकवान भी आज मिल रहा है टीवी पर आपकी ओर से. बस मेरा यही कहना है. बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी.
1: धन्यवाद आपको भी, और शुभ संध्या आपको.
2: शुभ संध्या आपको भी.
1: चलिए, कौश होता है लाइन पर, आइए.

0: उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हो? अच्छा हुआ ना।
1: हाँ, सब मेरा घोरा चल रहा है। ठीक ठीक ठीक
0: अच्छा, घोड़ा चल रहा है तो ठीक है, बताइए बताइए जी।
1: तो अभी दादी दादा दादी नानी के अभी के कौट लेवा था अभी।
0: कोई नहीं।
1: हाँ, सब तो भुला गलो से ना। एगो माले हो गल बालू के तो अभी भुला गल बा। अभी तो अच्छी बा। और एगो एनसाइक्लोपीडिया का लिते रहल से लोग अनपढ़ रहल से पढ़ल नहीं रहल में से में एनसाइक्लोपीडिया के रहल लोग संगे बहुत चीज जाना थरन से लेक्सटायंस पकाई के या चूटी के सब आगे के जब एगो पुरनिया धरल एगो घोपवा पका दे मच्छी के तकारी पका दे कड़ी बड़ी पका दे सुनुक पका दे तो कम जी कोजे बोले सा चाट चाट के खालन सा और आगे जीभ लंबा नहीं रहल ना।
0: नहीं।
1: अभी जीभ बहुत लंबा हो गल बा, समझला। हाँ,
0: हाँ।
1: कैसे आगे मानियो खातरी सा दूध संगे हाई भाई अति बटाट खातरी सा फ्रियापे खातरी सा मुरुम के भाजी और सब बेटा पत्तो लड़का सब एक एक को घर में रही है।
0: हाँ।
1: अभी तो एगो घर में चार गो पांच गो लाक्विजीन हो गल बा। ये कैसे हो गल बा? आगे जोन दादी दादा दादी है ने उन्हें जोन पकाई तब पत्तो बेटा के धुआ नहीं बा मुंह खोले के है
0: हाँ,
1: जे
0: चुपचाप
1: मुंह
0: रहेगी।
1: खोलला तो सौ बातू
0: हाँ।
1: पान नहीं खाइबा लात खाइबा समझला। हबी तो सौजो गल बा नेत आगे जस्ती मुरुम के भाजी हबी ने हम खाई हम सब खाई ला हम
0: पलंजर
1: मुरुम के
0: नहीं करेला,
1: भाजी
0: पलंजर नहीं
1: कुछ
0: करेला,
1: कुछ बोला था।
0: पलंजर नहीं करेला खाई में।
1: हाँ, तो हबी तारी विदेश से अति करब और लिवरपूल और अति खेला था तो हमें को बड़ा फान लिवरपूल आई। तो हबी जाब देखे लोचो सब पारे हो गए हमू सब पारे हो गए अभी एक वैंच मम्मा जाब हम
0: अच्छा।
1: हाथी आई आचा पका देवत आचा बना देवत रहता वो बहुत बढ़िया रहल हाई रोज होशकारी में मसाला दादी जब अति करत रहता वो एगो सोचौवे रहल मकई भूंज के खातरी सब वो एगो सोचौवे रहल हबी का मजे से अति हऊ अति लोग मजे हऊ अति लोग अति लोग मजे देखुवे कर लेवन सा दुखते अति लोग सब दुखते अति लोग कि हबी जब एगो अच्छी में पकाइबा चूल्हा में पकाइबा तो अभी एगो कौन से अधर था समझ ला। तो आगे जब भाई पकता था कहीं कौन से वानी धर अधर समझ ला। तो अच्छी बात और जो ने गो फागाता जन पका दे वो दादी तो हबी नहीं मिली हबी
0: नहीं मिली। हाँ।
1: समझ ला। तो ये सब अच्छी बात हमारे को छोटा संदेश बा और सब कोई के नमस्ते करा था और वो इतने कहता है कि हमारे लड़की मारी पति हम एगो बहुत बड़ा फान है
0: अच्छा
1: लेमोंड के पहला हम एगो फान है हम एगो
0: धन्यवाद।
1: कलेक्शने है हम सौ गो टीशर्ट हम लगे लोग जी एम्बेसी दिशा हम लगे ऐसे फिमले करके पासे कर रहा बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। चलो एगो और श्रोता बातें, चलो ओकरा हमनी सुनीला सर। सबसे धैर्य की मांग बातें सबके जो हाँ अवसर देव आप। हेलो
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हो? अच्छा हुआ।
1: हाँ, साइटू अच्छा हुआ ना।
0: हाँ, हम अच्छा है, बढ़िया।
1: हाँ, तो
0: सुनाओ।
1: बहुत बहुत जोरी जोरी बात आनान के सुनेला और नाना दादी दादा दादी की बात नाना लो के ई सब ते वो सपना है नहीं
0: सपना।
1: नहीं मिलेला नहीं लौकेला
0: हाँ
1: उ सब सच्ची के नहीं लौकेला औसन औसन दादा नाना जो नागे पासे होल मन सा दुख जितना दुख कर ले मन सा भाई देश सबने के सब आगे बढ़ाई ले वंशा खूब काम कर ले वंशा खूब काम कर ले वंशा बिना सवाद के हम दिख रहे हैं घर के नाना बिना सवाद के वो चल जाए बड़ी बड़ी हो अथी सब लाहौ सफा करी पलौते बैलगाड़ी रहल बिना सवाद के काम कर ले वंशा ली आर कोई चीज खातरन सब बोलता लीटी लीटी
0: लिट्टी। हाँ।
1: आटा सान के आटा आटा के हवे मोटा मोटा लीची उमे प्याज पीमाओ डाल के सेकल चा से कहीं सा चटनी से अरे सुलित रहन सा मलाड उलाड नहीं रहा लोग से गया वो देखो आगे के आदमी मलाड उलाड नहीं रहा निमन
0: नहीं
1: से
0: रहा।
1: खा के अच्छा दिन जियल वन सा ये सब

0: देख ले ऐसा हम देख रहे हैं तोरा सब इतना खुशी बेटी बेटी हम तोरा बेटी हो तू हमार बेटी हो
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: तो
1: धन्य
0: हम देख ले अच्छा चीज जब से देख ले इस सब से ता तब से तब बहुत चीज देखते देखते आवत है का बोले ला
1: हाँ
0: हाँ ये सब कहानी ये सब सपना ये सब नहीं लोकेला संगे
1: नहीं
0: लगेला
1: हम सुनावत है ना तोहरा कहानी के रूप में।
0: बोला
1: हाँ ई सच्चे हाँ पुरानिया पकवान से और
0: हाँ
1: ई कार्यक्रम से हम तो लोग के ऊ बखत ले जात रहनी जा ले जात हई जहाँ पर ही हमनी के दादा दादी लोग की यादें जुड़ल बाते हमनी के नाना
0: हाँ
1: नानी हमनी के
0: ना ना ना
1: जन
0: हाँ
1: माँ पकावत रहल ऊ खाए के नहीं मिली फिनो से।
0: फिर से नहीं मिली
1: हाँ
0: एक गो
1: सच्चे
0: टकरिया में खाप सब बड़े अच्छा लगे सब कोई प्यार सिखाथल
1: प्यार से खात हमर त हम
0: हाँ
1: जानी ला हमर माँ जब रहल तो हमरा ठक ठक के बोली खैबे ना तो तोर बाल लंबा हो जाए खैबे
0: हाँ
1: ना तो तोर गाल ऐसे झूली हो जाए तो
0: झेली
1: ऐसे
0: तो
1: ऐसे
0: खाली
1: ऐसे
0: खाई
1: हाँ
0: लेबा
1: हाली हाली खा ले। और हमनी पलंजर नहीं करत रहनी सब वो हमनी
0: नहीं
1: हाँ और अपन
0: जोन
1: हाथ से
0: मिले
1: खिया जोन मिले वो मान ले
0: जाने
1: एगो।
0: ला हाँ
1: हाँ
0: सोचा था ढेर लेके मामले के घर में जोन मिले रखा था ऐसा आज बरकत आल अभी तनिए सुन का ओए खाईवा में सब कोई खा ले वाथल
1: हाँ ये सच है ये थाली में हमार भाइयों खात रहा हमू खाते नहीं
0: खा चला
1: दोनों में। हाँ
0: हाँ
1: वो तो
0: हाँ
1: दूसर वे उतने आए फिनों से अब।
0: आर हाउ चोरवा खैला हुआ मांगलो मोटका छाओ
1: हाँ
0: मांगलो
1: खाए
0: मा
1: खा हाँ खाई है
0: मांगलो छाओ पका देबो डिक्की तो पक भी नहीं के दे ताल एक पक के एक डिक्की हो जाथल हवे खातली सा अच्छा
1: हाँ
0: लगा था फूफ फरहर हो थाल
1: फरहर हाँ सच्चे के
0: हाँ
1: बोला था वो।
0: हाँ हाँ
1: तो बहुत
0: हाँ
1: बहुत
0: अच्छा
1: धन्यवाद है
0: पूजा जी
1: धन्यवाद
0: मौका देना धन्यवाद बहुत तोरो बहुत
1: धन्यवाद
0: खुशी हुई थी बहुत
1: शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आमिर
1: एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको भी हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो नमस्ते
2: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी
2: हाँ
1: बोला।
2: एक पुरानिया पकवान में जब हम छोटे छोटे थे ना
1: हाँ
2: अभी तो क्या कहूँ मैं उम्र की बूढ़ी हो गई हूँ ना 80 ईयर्स हो गया है। ठीक अब जब हम छोटे छोटे थे मेरी माँ और मेरी दादी वो तान मकई था ना उसको लेकर ओखली मुसर में कुछ देती थी कुछ कर उसको जब निकाल कर थोड़ा सा आटा चाल कर डाल कर उसे मिला कर थोड़ा सा नमक डाल के वो मोटा मोटा लिट्टी पकाती थी तब वो उसके साथ वो आलू की चटनी बनाती थी। तो वो जो लिट्टी है ना मकई का और वो आलू की चटनी वही हम 8 भाई बहन थे वही खाकर पानी पीकर सो जाते थे। अभी तो वो सब पता नहीं कौन सपना में चला गया। धन्यवाद बहन जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आज हम बात कर रहे हैं दादा दादी की रसोई जो केवल खाने की नहीं अब तो ये यादों से भी जुड़ी हुई है। आपको याद है छुट्टियों में जब भी हम अपने बर्जनों के पास जाते थे कितने प्यार से वो लोग पकाते थे। थोड़े से ही सादगी के साथ ही जीते थे परंतु उन पकवान में व्यंजन में वो प्यार था अपनापन था। और ऐसे ऐसे पकवान बनते थे कि आज तरस जाते हैं ऐसे पकवान खाने के लिए। पर आज हम सभी फास्ट फूड के ही पीछे पड़े हुए हैं और यही उसका चलन है आजकल। तो 4028085 पर आप हमें अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। कुछ बात करना चाहते हैं कुछ बांटना चाहते हैं तो बिल्कुल

0: भूल जाती। चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते सुदेवी जी, कैसी हैं आप?
1: है,
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
1: आपके प्रोग्राम सुनती हूँ, बहुत अच्छी है।
0: धन्यवाद।
1: मैं बोलती हूँ, मेरे माँ रहेंगे कि इसके छिलके इसके पका देते हैं, उगाए और बस सारे में डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सूर्य के अच्छा बिना भी जाते हैं ना,
0: हाँ हाँ
1: हाँ, उसके पकाते हैं और सब कट के पकवान
0: सब।
1: मैं आपसे ही बोलती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम। पूजा जी मेरे लिए गीत बजा देना
0: जी। अवश्य मैं डालूंगी। धन्यवाद सुदेवी जी। अच्छा ओके, मैं डाल दूंगी आपके लिए। धन्यवाद।

0: चलिए एक और रश होता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
1: शुभ नमस्कार पूजा जी।
0: शुभ नमस्कार आपको भी नवीन जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप?
1: मैं चंगा हूँ। मैं अकेले चंगा हूँ
0: जी, बताइए।
1: और हमेशा की तरह मैं देर से आता हूँ, क्षमा करिए।
0: नहीं कोई बात नहीं,
1: आप तो जानते हैं मैं कहाँ जाता हूँ, हम कीर्तन करने जाते हैं इत्यादि
0: जी, जी।
1: तो बड़े व्यस्त होते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको तो हर क्षण उनके साथ रहना चाहिए, सुख दुख सब। अच्छा, आपके विषय ये है भोजन, पुराना पुराने समय का भोजन।
0: हाँ, केवल भोजन नहीं, उसमें
1: हमारे बाप दादी के भोजन
0: के साथ साथ यादें भी जुड़ी हुई हैं।

0: हाँ ये याद जुड़ी हुई है, लेकिन ये याद अब वो जमाना चला गया,
1: चला गया
0: वो
1: जी
0: अब वो स्वप्न हो गया,
1: जी
0: स्वप्न स्वप्न में जिएंगे। देखिए मैं कहूँगा हमारे बाप दादे या नाना नानी के जमाने ये अत्यंत क्या कहूँ अद्भुत थे ये जमाने। उनके खान पान में सबसे पहले जानते हो पूजा जी क्या समाया हुआ था? प्यार। बच्चों को खिलाना उनके लिए ये बहुत है, उन लोगों का काम ही था, बच्चों को आगे दे दे वो लोग खेले। सब लोग कुछ दूरी से देखते हैं कैसे बच्चों लोग खेलते हैं, लड़ाई भी करते हैं, भी करते हैं, और बार बार आके मांगते हैं यह दो यह दो यह दो। जाती यही खाना, पुराने खाना में जाती रहे नहीं, हम मौसमी भाजी खाते थे, वेदमा होता है ये पारंपरिक भाजियों में से एक है, मोरम लेकिन अभी तक है, लेकिन मौतें नहीं दिखाई देता है, महीना तो है ऊपर में उड़ती है लेकिन बाकी। और ऐसे ही हम हमको ये सत्तू, सतुआ जिसे बोलते हैं आजकल, मिलते हैं, हमने खरीद कर खाई, लेकिन आगे की सत्तू जो बहुत कठोर कठोर फोड़ने में कठोर था वो, और आग में ये सत्तू भून कर पकाते थे, मुझे याद है। हाँ दादी जी, और दादी जी ये भी करती थी छाछ,
1: हाँ छाछ।
0: जानते क्या है ना, दही बनने से पहले वो जो पतला पेई है उसमें हम जब हम छोटे तो हम उसमें चीनी मिलाकर पी लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था। खखोरी, ये घी बनने के बाद वो जल जला हुआ जो बचता था पात्र में, बड़ा और वो यानी कि वो जो स्वादिष्ट अवशेष था उसमें भी हम चीनी मिलाकर खाते थे, हमको उस समय शुद्ध घी भी मिलते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से प्राकृतिक स्थानीय और मौसमी तत्वों पर ये सब भोजन आधारित था। उनके उनका भोजन यानी न पेट भरने के लिए था, बल्कि स्वास्थ्य लंबी आयु पर ध्यान भी दिया जाता था। हमारे लोग, मैं जो कहूंगा कि हिंदुओं ज्यादातर ये शकरकंद खाते थे, या
1: हाँ
0: तो चूल्हे में डाल करके या उसे किसी आलू किसी उसको बॉयल करके, और मानियोक भी खाते थे वो, और नाम भूल गया, नहीं खाता हूँ, लेकिन कच्चू के भाई कच्चू की तरह होता है उनके पत्ते, तो हम ये सब खाते थे और बड़ा बड़ा स्वादिष्ट था। उससे मैं समझता हूँ अपने अनुसार ये सब भी बल देता था, ये खा ये सब खा के खा कर ये वो लोग खेत में काम करते थे, ईख काटते थे, ईख लाते थे, और कैसे पकता था ये सब खाना, कैसे खाना मिट्टी के चूल्हे में, मिट्टी के चूल्हे में या अंगीरी में, ये वो धमी पर धीमी धीमी पर वो पकता था, तो इसीलिए बहुत स्वाद सुपाच्य बढ़ जाती थी। और एक चीज हम जो हम पीते थे उसको कूट कूट कर ओकरी मुसर में, काफी
1: काफी
0: ये अब तो नहीं मिलता है उतना देश में, अब तो खरीद कर थे हैं। मुझे याद है अभी हमारे संस्था में स्वामी आए थे मेरे घर, स्वामी आए थे तो हमारे घर भी आया था सत्संग के लिए, तो ये बहुत बहुत दिन हो गया, बहुत वर्ष हो गया है, वो जो वो प्राकृतिक कॉफी था, तो हमको स्वामी जी ने कहा कहाँ से, तो अब एक बहन जी ने नवीन कहाँ से मिला तुम्हें, स्वामी जी मांग रहे हैं तो बोले दे दे दो दो वो पात्र ही उठा कर दे दो स्वामी जी को। तो ये इतना स्वादिष्ट था, ये हम बचपन में मैंने बहुत कभी पी है, ये बहुत अच्छा लगता था, तो अब नहीं मिलता है, उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो मैं कहूंगा आपसे अंत में कि यानी पुराने समय का भोजन जो है ना ये ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता था।
1: ये तो है।
0: तो यही हम ये व्यवहार कहूंगा व्यवहारिक भोजन था हमारा। तो पूजा जी कुछ कहने का अवसर मिला आपसे, कहूंगा आपसे फिर मिलेंगे छोटी सी दुनिया में,
1: आप
0: और कुछ विचार बांटेंगे। शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस विचार बांटने के लिए नवीन जी, और शुभ संध्या आपको।
1: शुभ संध्या।
0: चलिए, एक आखिरी श्रोता है, उनको हम अवसर देते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा
0: हेलो,
2: जी,
0: नमस्ते जी,
2: नमस्ते पूजा जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: आपके प्रोग्राम मेरी बढ़िया है।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: मुझे मुझे मेरी माँ की डुरपिति की याद आए ना।
0: दुर्पी थी। अच्छा।
2: हाँ, पर मैंने शादी किया था, मैं जब मेरी माँ मेरी डुरपिति पका के आनी, एक बात बोलते हैं, कोई लौटा दी मेरी
0: बीते
2: बीते
0: हुए
2: हुए दिन।
0: दिन। जी
2: ये
0: जी
2: दिन कब होने आएगा पूजा जी?
0: ये
2: अभी
0: कभी नहीं,
2: प्रोग्राम
0: वापस नहीं आएगा जी।
2: है, आपके प्रोग्राम बढ़िया है।
0: बहुत बहुत
2: थैंक
0: धन्यवाद।
2: यू वेरी मच पूजा जी,
0: आपको भी
2: लव
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: यू, टेक केयर,
0: आप भी नमस्ते।
2: बाय।
0: तो चलिए, श्रोता गैनी सी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ, और अंत में

जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज घर में क्या बना है, ये सवाल है आप सभी से। और कितने लोग तुरंत किचन की तरफ भागते हैं और कितने लोग कहते हैं जो भी बना है बस मुझे बता देना, मैं खा लूंगा। लेकिन जरा सोचिए, एक वक्त था जब घर में खाना बना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, किचन में एक अलग ही दुनिया होती थी। सुबह सुबह मसाले पीसने की आवाज, कढ़ाई में तड़के की छन और रोटी या पराठा सेकने की खुशबू और दूर से माँ की आवाज, खाना तैयार हो चुका है, खाने के लिए आ जाओ। और हम बोलते थे, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हम कब से किचन के आसपास घूम रहे होते थे, कभी गरम रोटी का टुकड़ा चुरा लिया, कभी कढ़ाई से एक आलू निकाल लिया और भागते भागते माँ की वो डांट, कभी माँ ने देखा तो हाथ हटाओ अभी खाना रेडी नहीं हुई। लेकिन श्रोताओं, वो सिर्फ शरारत नहीं थी, वो बचपन था। और उस बचपन का एक बड़ा हिस्सा था घर का खाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम बढ़ते हैं तो हर पसंद कार्यक्रम की ओर। आपके ही पसंदीदा गीत चलाएंगे, भोजपुरी के सभी गीत 402-808-5 पर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तो हर पसंद कार्यक्रम की ओर।

0: सब कोई के नमस्ते और ई प्रणाम अपन घरे मिला ल जा और ई बखत 5:03 हो गल बाते और तुहार पसंद कार्यक्रम में सब कोई के हमनी दिल से स्वागत करत हैं जा। एगो लानी वैसे बाते नाइट एगो प्रेमी खातिर एगो गीत चलाए के खोजत हुआ तो सक बजा हमनी के टेलीफोन करे 4028085 पर नहीं तो 2 51 6005 पर सक बजा हमनी के मिसाजो भेजे। तभी सुदेवी जी जुन्हा हेले साबुन हेले लुंडाई गीतवा की जुन्हा फरमाइश कर ले बाते तो चला नीरज गुप्ता जी के गावल गीत ये गीतवा हमनी सुनी रहा सा और जे जे हमनी के सुनत हवन जा और रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़ल हवन जा सब कोई के बुलब जा स्वागत।
1: हेले साबुन हेले लुंडा
0: लेके खूबे के चाहेला निहाए के अब तक गरम के समा चलाल बाते

जिए के, आज मैं जिए के, सबसे प्यार करे के, कोई दुश्मनी नहीं, कोई घमंड नहीं, और जो इन बातें चाहे ला निम्ने से खाए के। और ये गीत खाले पीले खासतौर पर ईश्वर जी नुवेल फ्रांस से हमनी के सुना था वंजा। और अब हमनी बढ़ब जा जन्मदिन के गीत, और ये गीत वा खासतौर पर इंदिरा कालो। और अनीता जी हवा नमादाल बेस से ओकर भतीजी के जो है ओकर सालगिरह बाते खुशी हितु पापा संजीव मामा चंदा सभी पुपू के देने से ओकरा जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। चाचा और चाची और हितु परिवार, लालजी परिवार, गोगा परिवार, खुशी के बहुत बहुत बधाई देवत वंजा। और जे कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा, सब कोई के पूरे एमबीसी टीम देने से हैप्पी बर्थडे।

हमू तोहर सब के राह दिखत है 402-808-5 पर 402-80-85 पर सब बजा टेलीफोने करे 2251-6005 पर खाली मैसेज सक बजा भेजे खाली मिसाज 2251-7005 पर 402-80-85 पर टेलीफोने करिए। और ये गीत खास तौर पर सुनीता जी गांव गोप से अपन बहन विमला जी खातिर।

और ये गीत मुर्गा मुर्गी और है गीत सुदेश बोजू जी के गावल गीत और गीतवा के मांग कर ले बातें महेन जी पालमा से काथो बोन और दीदी गीतवा खास तौर पर दीदी मान और सब संगत्या परिवार खातिर।

अब मुर्गा के मुर्गी के छुरा के लेके चल जाई बा, तो रोई नहीं मुर्गी, मुर्गाओ ने रोई, जुदाई चलाल बाती, है ना? देखा था ना कैसन कैसन गीत बाती हमनी के भोजपुरी भाषा में। तो चला अभी जुन्हा और ये ता से रागिनी सुखदेव जी ओकर सालगिरह बाते और प्रीति राजेश आदिति रंजीत और बहन रेशमा बेटी येशा आयुष और पति मुकेश मामा गीता दीवन और सालगिरह के बहुत बहुत शुभकामनाएं देवत हवन जा। तो चला अभी हमने है गीतवा सुनीरा सा अभिमन्यु जी के गावल गीत और है ये गीतवा खास तौर पर लेकराम जी अपन पत्नी देवी जी खातिर पीछे पाके से सुना थवन जा।

गीतवा के मांग कर ले बाती अनीता जी त्रियोले से सुना था वन और बहु पूजा और साथ में बाते दामाद वेद बेटी अंजू सिया और का सब परिवार खाते।

जितना प्यार से जितना मिल के रहबा उतना ही देश के प्रगति होई और साथ में प्यारो जुन्हा सब में रही, भेदभाव ने रही और ढेर कोई जुन्हा निमन से सकब सा रही। तो चला अभी अंतिम गीत, खास तौर पर इंद्रानी जी और सब चताकू परिवार के नाम और खास तौर पर कमला दीनू जी और साथ में नवीन लक्ष्मण जी, आशा जानू जी, वीना जी, श्यामा जी और चित्रा जी, हवन मौदाल बे से खास तौर पर ओकर खातिर और ओकर सब परिवार खातिर गीतवा और बातें शांता सुकाही जी, नीता खेदनी जी और साथ में त्रिवेणी जी गुडलैंड से सभी मोहन परिवार के नाम, शोभा जी हवन वाकवा से, उषा जी, देवी जी हाईलैंड से, रेहाना जी हाईलैंड से हवन और साथ में काजल जी हाईलैंड से, तो चला ई गीतवा संगे हमने तोहार पसंद कार्यक्रम के अंत तक चला लहन जा सबको के बोला अब जा नमस्ते, स्वस्थ रहिया, सुरक्षित रहिया, प्रणाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत।

0: चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सैपुल स्थित जे बालगोबिन आश्रम ने अपनी स्थापना की 31 साल मनाई। आर्य सभा मॉरिशस के संरक्षण में संचालित इस संस्थान में 75 निवासी रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोग शामिल हैं। पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए माओ वाकवा जलाशय में आज वृष्टि महायज्ञ का आयोजन, जहां का जल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित। आर्य सभा मॉरिशस की पहल पर आयोजित इस यज्ञ में मॉरिशस वासी की बड़ी संख्या में भागीदारी। विदेश में एल साल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित लागुना दे अलेग्रिया भीषण सूखे की चपेट में है। वहां पर मौसम के बीच तेजी से जल स्तर खो रही है। इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों और जल संसाधन विशेषज्ञों को की चिंता बढ़ा दी है। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही इससे जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
1: यहाँ कॉलोव्यू में कूड़े की थैलियाँ, पुरानी अलमारियाँ सब फेंके गए हैं। बाशिंदों के लिए ये स्थिति चिंताजनक और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
2: Construction. En démolition, le vin est là. Si je m'en souviens, il se fout une cassée, l'autre machine à laver. Ce n'est pas, je n'ai qu'à l'étude. D'un quoi, quand tu es rêvé, on est là.
1: थोड़ी दूरी पर होशभुइन में हालात ऐसे ही हैं। अधिकारियों ने एक खाली पड़ी जमीन के मालिक से यहां घेरा लगाने और कचरा साफ करने की मांग की थी, क्योंकि इस जगह को देखकर ही आंखों को तकलीफ होती थी। सफाई भी की गई, घेरा भी लगाया गया, लेकिन ये काफी नहीं रहा। लोगों ने घेरा हटाकर अब वहां फिर से कचरा फेंका है।
3: À plusieurs reprises, il fait nettoyer, les réparer. Ça veut dire une irrespect mentalité. Ça veut dire nettoyer, jeter, nettoyer, jeter, nettoyer, jeter, pas trouver une solution.
1: ऐसी स्थिति जो हमें एहसास दिलाती है कि सफाई से बढ़कर लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए। इंस्पेक्टर विश्वनाथन अमा से बताते हैं। मालिकों को घेरा लगाना चाहिए, खेती करें, उस जगह को साफ रखें, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि कुछ ऐसे गिने चुने लोग भी हैं जिनकी हर जगह कचरा फेंकने की अब आदत सी बन गई है। अधिकारी मांग करते हैं कि पुरानी अलमारियां, अन्य बड़े सामानों के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। बोबासन रुजिल के मेयर आंद्रे टुसें बताते हैं। नगर पालिका के साथ संपर्क करें, इसके लिए एक रकम चुकानी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होगा कि कचरा कहाँ फेंके, यहाँ वहाँ सड़कों पर नहीं। पुराने गड्ढे, डालियाँ, सभी ऐसे कचरे के लिए हमें शहर को साफ रखना चाहिए। मालिक, अधिकारी और बाशिंदे सबकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि पर्यावरण और नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये सभी स्थल एक बार फिर से खुलेआम कचरा फेंकने की आम जगह बन जाएंगे।
0: रम डे मोरिस के जियोग्राफिकल इंडिकेशन लेबल का आधिकारिक अनावरण किया गया। ये लेबल उत्पाद की उत्पत्ति और निर्धारित मानकों व नियमों के पालन

0: की गारंटी देता है। इस साझा पहचान के तहत मॉरिशस की 7 स्थानीय डिस्टिलरी एकजुट हुई है। इस पहल का उद्देश्य मॉरिशस के रम को विदेशी मंडियों में बेहतर ढंग से स्थापित करना और उसकी पहचान मजबूत करना भी है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: मॉरिशस को उसकी रम के लिए नई पहचान मिली। नया लेबल रम दे मॉरिस जनता के सामने पेश किया गया। इसे प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण मिला है। इससे मॉरिशस में तय नियमों के अनुसार तैयार की जाने वाली इस रम को एक अलग पहचान मिलेगी।
2: Rhum, il fait apporter du sucre et le sucre, c'est par rapport à nos cannes qui nous plantaient à Maurice.
1: रम शक्कर से बनती है जो यहाँ के गन्ने से मिलती है। आज हमारे रम अन्य देशों के रम से अलग हैं क्योंकि हमारी भूमि ही अलग है। ये मान्यता यूरोपीय संघ की ओर से मिली जो इस विरासत का संरक्षण करता है। इस लेबल का संबंध 7 स्थानीय डिस्टिलरीज से है। हमारे देश के गन्ने से ये रम बनती है। इसमें मॉरिशनों का ज्ञान है, डिस्टिलरी का तरीका है, जो सभी दिखाते हैं कि आज मॉरिशस का रम बेहतरीन किस्म का है। यह मान्यता विदेशों में मॉरिशस की रम की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा। इससे रम के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
3: मॉरिशस
1: के रम की मांग ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी है, जैसे जमैका आदि। इसीलिए मॉरिशस की अपनी ठोस पहचान होना जरूरी है। मंत्रालय आने वाले दिनों में एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर के साथ सामने आएगा स्थानीय सामानों के लिए, ताकि उन्हें विदेशी मंडी में पहचान मिले। इस तरह रम दे मॉरिस मॉरिशस के 2 अन्य भौगोलिक संकेतों मॉरिशस शुगर्स और लिमो रोड्रिग में शामिल हो गया है।
0: माओवाकुआ जलाशय का जलस्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्यसभा मॉरिशस ने एक वृष्टि महायज्ञ आयोजित किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहूतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की गई। आस्था गोबिंद चितामन की ये रिपोर्ट पेश है।
4: माओवाकुआ का जल स्तर घट रहा है। इसी जलाशय के समीप आर्य सभा मॉरिशस ने वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में वर्षा को धरती और वनस्पतियों के जीवन से जोड़ा गया है। यहाँ वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि में आहुतियाँ अर्पित की गईं। यज्ञ में सामग्री भी डाली गई, जड़ी बूटियों, घी, सूखे मेवों और अन्य पदार्थों का मिश्रण। यज्ञ और वर्षा के बीच माने जाने वाले संबंध की वैदिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई।
5: इस यज्ञ में हम विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं जिससे एक वर्षा हो सकती है, और खासतौर जब पर सूखा पड़ता है तो इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है जलाशय या नदी के पास। और इससे क्या होता है कि जो विशेष हम औषधि इसमें इस्तेमाल करते हैं वो औषधि मतलब वर्षा को मतलब ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इससे वर्षा होती है। इसमें विशेष जो है घी इस पर डालते हैं, और इसमें जो सामग्री होते हैं उसमें विशेष औषधि, शहद और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगाया जाता है। जो मॉलिक्यूल ये औषधियों में मतलब रहें उसको हम धीरे धीरे पूरे ये जो वातावरण है हमारा, हवा है मतलब पर्यावरण में, उसको धीरे धीरे जाता है तो एक तरह से क्लाउड सीडिंग होता है, और उस क्लाउड सीडिंग से हमारा जो जगह है वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ठंडे होने के कारण वो वर्षा होने लगती है।
4: दिन भर श्रद्धालु सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने आती रही। मंत्रों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई। वर्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया।
6: तो ये वेद के आधार पर मंत्र पाठ करते हैं, और वो मंत्र में भी जैसे मेंढक शोर करते हैं ना,

0: इसी प्रकार से कुछ मंत्र इस प्रकार से है जो शोर करे और बादलों को इकट्ठा करे ताकि बरसात होए। के वेदों में कहा गया है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और सर्वश्रेष्ठ कर्म कैसे? अभी देखिए, हम तो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से, और देखिए कि हमारे जो पहाड़ों में जो नाले हैं, जो जहाँ पर पेड़ जम गए हैं, जो नाले जलाशय में पानी लाते हैं, उसको साफ करना भी एक यज्ञ है, उसको भी साफ करना एक यज्ञ है। और जितने भी नाले होते हैं जो पानी लाकर हमारे जलाशय में छोड़ते हैं, लोगों से तो यही हम मांग करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि इन नाले में ना फेंके, ये भी एक यज्ञ है।
1: सायं 6 बजे अंतिम आहुति के साथ महायज्ञ पूर्ण हुआ। मौवाक्वा के समीप की गई ये प्रार्थना समूचे देश के लिए थी, अच्छी वर्षा हो और जलाशयों के साथ अन्य जल भंडार भी फिर से भर उठे।
2: सैंपल स्थित जिबा गोपीनाथ ने अपनी स्थापना की 31 साल मनाए। आर्य सभा मॉरिशस के संरक्षण में संचालित इस संस्थान में 75 निवासी रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोग भी शामिल हैं। आश्रम की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहे। क्रिस्टल विभास की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी बिकर को।
3: 1 स्केच के माध्यम से आश्रम में रहने वाले 3 लोगों ने आश्रम में अपने दैनिक जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। जदुनानन बालगोबिन आश्रम में आज 75 लोग रह रहे हैं। वृद्ध लोग हैं, लेकिन साथ में मानसिक परेशानियों से ग्रस्त लोग भी, जिन्हें जीवन शैली के अनुरूप चलना है और उचित सहायता से भी वे लाभ उठा रहे हैं। जदुनानन बालगोबिन आश्रम के ऑफिस इन चार्ज Hiramani Dindyal ne kaha,
4: j'ai beaucoup d'activités aussi que je peux faire qui permet de pas rester assis pendant toute la journée. Et par exemple, comme je fais un petit peu de gardening, il y a beaucoup résidents ici qui malgré qu'ils ont l'état qu'ils ont été, mais parfois je prends des livres, je lis.
3: 31 साल हो गए हैं जब से इस आश्रम में लोगों की देखभाल की जा रही है। गर्मजोशी भरे और दोस्ताना माहौल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
5: Bon, mettre l'emphase que nous besoin essaye trouve une solution à ce que nous appelons generation gap entre les vieux et les jeunes. Et non, bon moyen pour rapprocher les deux, bon jeune et bon vieux. On peut aussi dire qu'avec la technologie qui peut avancer, nous devons faire attention pour ne pas gagner un digital divide entre bon personnes âgées et bon jeunes.
3: वहाँ रहने वाले कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गीत, कविता और कलात्मक रचनाएं इस सालगिरह के लिए मिलजुल कर रहने और मेल जोल की भावना पर ध्यान केंद्रित, खासकर एक ऐसा मौका रहा जब ये लोग अपनी कला के माध्यम से अपनी आप बीती बयां कर रहे थे। 31 वर्षों बालगोबिन आश्रम के इतिहास को दर्शाया जा रहा था।
2: मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अलग अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज, संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोर्टलिस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी में जीत नोत्रदाम काली माता मंदिर की टोली की हुई। और पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन मेजिन कौदे मास की टोली की जीत हुई। याचना मिश्रा।
6: रामायण का पाठ करना, रामायण गायन एक वास्तविक कला है। रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को पारंपरिक धुनों के अनुसार गाया जाता है। इसमें लय और स्वर के साथ रामायण के कई प्रसंगों को जीवंत किया जाता है।
7: जो उनको मजा हिंदी में जाए उतना बोले लन जा तो उन लोग में थोड़ा कठिनाई हुए ला। जब हिंदी बोले जान जेबा तो हमें के हो शब्द उच्चारण करके ज़्यादा अच्छा रहेला और राग डाले के भी अच्छा रहेला। और जो उनकी से चौपाई के राग दूसर है, दुहा के राग दूसर है, और कमिश्रा के राग दूसर है।
8: रामचरितमानस सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है।

0: इसलिए इसको नित्य प्रतिरोज इसका पाठ करना चाहिए और स्वरबद्ध करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए।
1: मंच पर अलग अलग समूह रामायण गायन की अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। कुछ समूह पारंपरिक शैली में, कुछ आधुनिकता के साथ अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके लिए तैयारी, रामचरितमानस के पाठ की अच्छी जानकारी और इस परंपरा की विशिष्ट धुनों और लय को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
2: हम छोटा से खेलते ली ढोलक चौताल, ढोलक सीखे के आगे हम कबीला के जो नामों के रहा आगे मिल के जीबिया और ले गाँव जी करके उसे बजावट ली सा। तब आले आले बैठका में जब चौताल 40 दिन हो गए तो हमने छोटा रही सर देखा रही सर, तो जब वो लोग पोजे हो गए पो तब हम लेके ढोलक पास सही कर टली। तो एक वो दादा बोले एक दिन ही निमान से बजाए और कैसे बोले और बोली और कैसी सच हो अभी ले बजाई थे हैं। अब जनबा अब मुझे जो जन लोग दूसरा कायदे खेले तो उनसे अनुभव है सो नया स्त्री मौ सब कायदे नया स्त्री मौ से भी करने सो अब तो लागी तो सब दादा तो उनसे
3: प्रेमी बिजे फे मन जन कुंतन रामायण ना वो गॉड ला ट्रेडिशन सब जे ला फासों जे वे अशों की चपे चपे संते ट्रेडिशनल ला वे सो लोटा सो डोलोक सो जाल मे मेंटनो से मौ प्लस वी के कम सेरे ला वी पे एवोलुए एक बन जन ला जे प्याल देन लोट डायरेक्शन अलोस मौ कम गुरुजी की मन फे सों सों जन चपे बन राग की प्याले ला दो।
1: युवाओं की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: Le même grand jeune, nous je peux faire lire avec la joie quand je peux finir tout à faire, je peux assister, je peux faire lire comment un pasteur pour ça. Nous peux faire lire pour garder culture.
5: Dans l'enfance, moi je parle chez voilà 6 fruits la vagogni dans notre mandir. Là depuis là-bas, nous commence à prendre tabla. Moi j'ai de l'eau, mon accompagnement là.
6: Moi maman a participé à petit amène moi Shivala. Et depuis Shivala, même mon apprend la Mayenne. Et la Mayenne fait moi apprendre beaucoup d'affaires.
7: Et depuis petit, moi de la musique. Mon ressonné, mon son tablassi. Et mon courage. Tout le monde va bien, c'est qui veut ça. Et je crois de la musique, faire la prière, tout ça là.
1: तीन श्रेणियों पारंपरिक, आधुनिक और चौताल में आयोजित यह प्रतियोगिता मात्र एक प्रस्तुति ही नहीं, हर समूह अपनी अलग शैली के साथ प्रस्तुति देता है लेकिन साथ ही उस परंपरा से भी जुड़ा रहता है जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
8: आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। ये कार्यक्रम प्लान व्यर्थ में लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया। ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण और मतलब के लिए ये संस्था तमिल संस्कृति के लिए काम करती है और सैखवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती है। सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी पिकर को।
9: सुब्रमण्य भारतियार एक तमिल विद्वान, स्वदेश मित्रन अखबार के पत्रकार, भारत में वे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में भी संलग्न रहे।
10: Quand nous guettons ben du monde qui ne la guerre dans le passé, toutes les difficultés qui sont capables de finir là. Pour la guerre, pour l'émancipation, pour la guerre, pour ben droit humain.
9: रविवार 20 सितंबर को प्लान बैक में उनके नाम समर्पित एक बाग में उनकी 105वीं पुण्यतिथि के अवसर पर फूल चढ़ाने संबंधी एक समारोह का आयोजन। मौके पर मौजूद अतिथियों ने उनके कार्यों की सराहना की।
11: Pasiste en langue Istanbul dans plusieurs les autres langues bien écrire et c'est ça qui nous encourage de bande jeune maîtrise langage pasiste anglais français créole.
9: उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय रही हैं कनन पट्टू।

0: कृष्ण को समर्पित गीत जिसे श्री सुकलिंगम मनाची अकादमी के बच्चों ने गाया।
1: मनदिल उड़ी वेंडुम वाक्य निले इनिमे वेंडुम निनेवु नल्लरु वेंडुम।
0: हिंदू महाजाना संगम के संचालक सैद खां के कैलासो कोविल के मूल ढांचो में सुधार कार्य लाने का इरादा रखते हैं। नौजवानों को सुब्रमण्य भारतियार की कविताओं को अतिरिक्त रूप से सीखने का मौका मिल सके, इसलिए
2: pour mis un nouveau bâtiment où accueillir une classe tamil de Kailaso pour l'instant il est bien serré nous avons des élèves augmentés
0: tamil sanskriti sambandhi pehluon ko ve jaan sakenge
3: विदेश में अल सल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित लागुइना दे अलेग्रिया भीषण सूखे की चपेट में है। जी हाँ, वहाँ इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों का मतलब और जल संसाधन विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। वहाँ पर हरे पानी के लिए प्रसिद्ध ये ज्वालामुखीकृत झील बारिश के मौसम के बीच भी तेजी से जलस्तर खो रही है। और उधर मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की जाने गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है। और इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि शनिवार को कीव और सुमी क्षेत्रों में रूसी हमलों में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। अब आखिर में मौसम का हाल। मस्कारीन के दक्षिण में एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफी अच्छा रहेगा। कल भी मतलब कल बादल कुछ घिरे रहेंगे और देश के दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 21 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6 बजे।

0: 6:23 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। अली रुसाई घो कायु में, अली रुसाई घो कायु में 68 साल के 68 years old श्री प्रकाश सिंह लक्ष्मण, श्री प्रकाश सिंह लक्ष्मण जिन्हें लोग प्रकाश नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान अली रुसाई घो कायु से उठाकर बांबू कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। सेंट आन रोड प्लेंडिजेसी फ्लैक में 48 साल के 48 years old श्री हेमंत कुमार सोमरा, श्री हेमंत कुमार सोमरा जिन्हें लोग नितिन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी वर्षा सोमरा के मकान सेंट आन रोड प्लेंडिजेसी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचू या कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉय रोड आमिचे में 97 साल की 97 years old श्रीमती

डमासिला धमरो भेरा श्रीमती डमासिला धमुरो भेरा पैदाशी नाम लो सर और जिन्हें लोग दादी बाबू नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे अविनाश

हॉस्पिटल में 78 साल के 78 years old श्री सोनालाल सोमारू, श्री सोनालाल सोमारू जिन्हें लोग ज्ञान सदा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे राजेश सत्यम रितेश सोमारू के मकान अवेन्यू दो दो लेस्पेरेंस पीटों से उठाकर काहू मौत है लेस्पेरेंस पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। पायांकु रोड प्रोविडेंस का छह मिलिटेयर में 61 साल की 61 years old श्रीमती बिमला गुप्ता। श्रीमती बिमला गुप्ता पैदाशी नाम राम भोजू और जिन्हें लोग कविता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। कीर्थी कल सुबह नौ बजे इनके बेटे इरेश गुप्ता के मकान पायांकु रोड प्रोविडेंस का छह मिलिटेयर से उठाकर में जिनका उद्यमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: नमस्कार, CWA की CB की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ, CB की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। CB कटरबोन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं। CB कटरबोन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं। इलाका जो पाल्मा रोड से शुरू होता है, वेस्टर्न बाउंड्री, मैनिक एवेन्यू, लुचिस एवेन्यू, जैक्सन एवेन्यू, गोपाल सिंह एवेन्यू, रामदनी एवेन्यू, बासर रोड, कावलेसौर लेन, लासूस एवेन्यू और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 21 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 8:30 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। CB ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि जैसे ही मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे, तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। CB अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के कारण क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक विज्ञप्ति CB की ओर से।
0: MBC Radio 24 hours a day.
2: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台9月20号的节目，我是您今天的节目主持人张大卫。今天是歌曲节目，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
2: बजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? दिन के कार्य निपटाकर चलिए थोड़ी देर के लिए उस प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे धरती में जब बीज बोए जाते हैं तो एक समय लगता है उसको उगने में, और हर बीज का समय अलग अलग है। गेहूं का समय ज़्यादा है तो कोतमिली का समय कम है। इस तरह से हर बीज अपने अनुसार, आम का बीज बहुत समय लेता है पेड़ बनने में। तो श्रोताओं, हमारे कर्म भी इसी तरह से हैं। कुछ कर्मों के फल जल्दी मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल देर से मिलते हैं, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम हमको मिलता ही है। इसीलिए भज ले प्रभु का नाम। यदि हम अपना कुछ समय उस प्रभु के साथ जोड़ते हैं तो हम अपने कर्मों को शुभ रास्ते की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जितनी देर हम प्रभु के नाम से जुड़ते हैं, हम दुनिया के द्वेष, राग, अहंकार, इन बुराइयों से थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं, तो धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ने लगता है। और जितना अभ्यास बढ़ता जाता है, जितना प्रभु का नाम भजते जाते हैं, उतने ही हम ऊँचे उठते चले जाते हैं।

श्रोताओं, जब एक बार प्रभु से हम जुड़ जाते हैं ना, तो प्रभु जैसे जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है, ठीक ऐसे ही भक्त को प्रभु नाम अच्छा लगने लग जाता है। और जिस दिन वह प्रभु नाम नहीं लेता, उसे लगता है कि आज उसका दिन बेकार चला गया, आज उसने समय का सदुपयोग नहीं किया। तो प्रभु नाम का भी एक नशा है, यह सकारात्मक नशा है। जैसे भूख लगती है तो खाना चाहिए ना हमें, इसी तरह से आत्मा की भूख भी बढ़ने लगती है और हम धीरे धीरे प्रभु नाम को बढ़ाते जाते हैं, उसका भजन अधिक करते हैं,

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है, उन्हीं का वर्णन है इसमें।

और अंत में श्रोताओं, सुमिरन की बड़ी महिमा है। जब हम हृदय से भाव विवल या भावुक होकर उस प्रभु को याद करते हैं तो इसे ही स्मरण कहते हैं। यह जप केवल अब होठों तक नहीं रह जाता है, यह जप तो खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय उस प्रभु का धन्यवाद, उसको याद करना, उसका नाम जपना चलता ही रहता है। तो जब हम प्रभु के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हर कार्य प्रभु के लिए है, तो कहाँ से बेईमानी करेंगे। हम ईमानदार होने लगते हैं, हम मेहनती हो जाते हैं, हम सकारात्मक हो जाते हैं। यही तो प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। तो आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए इस भजन को सुनते हैं। अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

रात के 9:10 हो गल बा। सभी श्रोता लोग तोहर पता बाते कि सबसे बढ़िया चीज़ का है जीवन में तोहर प्रति सब कोई अच्छा सोचिया तोहर आदर करिया। नमस्कार श्रोता लोग, कैसन हवा भोजपुरी तरका तोहर खातिर रात के 11 और उषा तोहर संगे साथ देव जा। और भोजपुरी तरका तोहर बढ़िया प्रोग्राम तोहर खातिर रोज चलेला और आज भी तोहर सेवा में हम आज चलल बाते। नंबर वा घुमा हुआ कत सौदे का थोवे का थोवे सैक तो चला किशोर किमिया के गावल गीत जितना लोग हमने के सुनता जुड़ चुकल जुड़ल बा हमार संगे। तो चला गाना तो

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:22 हो गल बा श्रोता लोग सब गीतवन के पीछे एगो संदेश रहेला इहे चाहेला हमने के समझे के कलाकार के मेहनत बहुत लगेला अपन गीत निकाले के ओ लोग के हौसला बढ़ाए के चाहेला हमने त ओ लोग के गीतवन भोजपुरी तरका प्रोग्राम में त चलेला सा चलाइला सा त चला अगला गीत संगीता जी खातिर जन हमने के सुनता क्यू पिप से साथ देने खातिर धन्यवाद चला गाना तोहर खातिर और परिवार खातिर

चले श्रोता लोग, एक के बाद एक बढ़िया गीतवन के बहुत चार और बातें रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहर पर। यह तो हम पसंद के कमाल हम तो बोलवे करब की तो हो लोग हवा जा एकदम कमाल। तो चला 9:27 हो गए बा और अगला गीत देवीना खातिर जो काम करता विक्टोरिया हॉस्पिटल में और ई गाना एकर खातिर एकल संगतिया खातिर जो ई बखत साथ मिलकर काम करता। तो चला बोन कुराज।

रात के 9:50 हो गल बा श्रोता लोग कितना कोई आगे रात के रेडियो नहीं सुना टलन जा पर सबसे भोजपुरी तड़का के सिलसिला शुरू होल तब से त हमनी के श्रोता गण रोज के रोज अपन रेडियो के भीरी आके साथ देवेला जा एकर खातिर तोहरा दिल से धन्यवाद देवा तवन जा। और अगला गीत इंद्रानी जी खातिर जोन हमनी के सुनाता मेबग से चला गाना तोहर खातिर पति राजन खातिर और सभी रूपल परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:02 हो गल बा। हमनी के संस्कृति तो बहुत पावन है। देखबा तो गणपति पूजन के बाद अक्टूबर महीना में दुर्गा पूजा आरंभ होता। तोरा हमेशा मौका मिलेला अपन गलती सुधारे के। बार बार गलती कर बता ईश्वर कभी माफ नहीं करिया। तो ख्याल रखिया कि एक अच्छा मनुष्य बने कि यही है हमनी के लक्ष्य। तो चला अगला गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और गाना नीरव खातिर जोन रहिला कौछे मिलते फ्लक और इबखत गाड़ी चलावता। तो चल सावधानी से और ई गाना तुहर खातिर और मंगेतर कृष्टि खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात के 10:17 हो गल बा श्रोता लोग हरदम बोलीला सा कि तोहरा पॉजिटिव चाहेला रहे के यानी सकारात्मक सोच चाहेला अपनाए के फिर भी बहुत कोई इस साथ सब बात समझते हुए भी चिंता से अपन के कमज़ोर बना देवेलन जा ये जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आवेला और हार मानकर बैठ जैबत समझा हौजे तो हर जीवन निरर्थक बन जाए त हिम्मत जूता के मुसीबत के सामना कर जा चला अगला गीत सुना जा भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के गावल गीत और ये गाना पृथ्वी खातिर जोन रहिला गुडलैंड और ये बखत सुनाता ये गाना एकर खातिर और एकर पिताजी ज्ञान दत्त खातिर

भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:40 हो गए बा श्रोता लोग भोजपुरी तड़का तुहर खातिर। और ये गाना रोशन सरासन के गावल गीत वंदना हमर सुना। और ये गाना विनय खातिर और ऊ रहिला रोजिल ई बखत हमनी के सुनाता। तो चल विनय जी ये गाना तुहर खातिर और हमारे तमाम सुनने वालों खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात के 10:52 हो गल बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन एकमात्र ऐसन चैनल बा श्रोता लोग जन में भोजपुरी कार्यक्रम में चलेला भोजपुरी गीतवन खेलते रहेला। खाली भोजपुरी ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वी भाषा भी जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हक्का, मंडारिन तहे चैनल के हमेशा साथ देते रहिए जा और वादा कर तई रहल तोहर खातिर भोजपुरी तड़का आज्ञा दिहा और बहुत जल्द मिलब जा। अपन ख्याल रखिया जा। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनिशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस जरा थाम लीजिए और दिल का दरवाजा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफर लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के नाम।

0: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाजें ऐसे होती है ना जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। वो गीत जो हमारे माँ बाप ने गुनगुनाए होंगे किसी जमाने में, जो हमने बचपन में रेडियो पर सुने और जो आज भी दिल को उतने ही सुकून देते हैं। आज की ही रात उन्हीं अनमोल नगमों के नाम हैं। अगर आप कहीं सफ़र में हैं, घर पर हैं या काम पर हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर लीजिए।
1: दिल से

हर गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उससे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी के जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहां भी हैं बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: किनेरे तू दोंदे हास एस्टाओ, he removido cielo y tierra y no te encontré, y llegas hoy tan de repente y da sentido a toda mi vida con tu querer.
3: Na me samjha, na me jana, jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun

है कयामत मत तड़पा ऐसे तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावट की।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: ए, क्या बोलती तू?

0: You're listening RM-Free Radio. Radio. Radio. Radio Mauritius.
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस.
0: रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.